0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाइयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवाद हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक

कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृति और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आयला सबलेंका को पराजित किया। रायबाकिना का यह पहला अमेरिकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमेरिका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्वाइड्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉस्मिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। वियतनाम के फान थिएट में स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फाइनल में जापान के यामातो सुएओका और नाओकी ताजिमा की जोड़ी को 6-1, 7-6 से हराया। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
1: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
3: I would like to say that the outcome document.
4: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें, तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए

0: आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
1: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
2: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
7: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्री राम शर्मा।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
8: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
2: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
9: महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का यह पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बेटून कोज़ेमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
2: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
11: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के रुख को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्य के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद। जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी, जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी। कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा, आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास, रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार, कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान,

0: से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: Today is the second and final day of the BRICS summit. Our correspondent has filed this report.
2: Today, BRICS member and partner countries will participate in the session based on resilience, innovation, cooperation and sustainability, shaping the future for inclusive global growth. The 10

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम 8:40 और ठीक 33 सेकंड हो चले हैं। रविवार की सुबह हो और आपकी दोस्त माला आपके साथ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आ गई हूँ मैं। आंखें बंद कीजिए और सोचिए, हम मुंबई से निकलकर पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह जहाँ की कहानी जमीन से नहीं आसमान से शुरू होती है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है लोणार, एक विशाल क्रेटर जिसके बारे में माना जाता है कि हजारों साल पहले एक उल्कापिंड से टकराने से ये अनोखा भू आकार बन गया था। यानी आज की हमारी यात्रा में प्रकृति भी है और अंतरिक्ष का रोमांच भी। तो चलिए, आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर आपकी दोस्त माला मस्त मुंबई आज चल के तुझे लेके चलूं एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर शायद पहला सवाल यही हो कि आसमान से यहां ऐसा क्या गिर गया था।

धरती पर बना आसमान का निशान सोचिए, अंतरिक्ष से आया एक पत्थर धरती से टकराया और पीछे छोड़ गया एक विशाल गोलाकार निशान, जिसे आज हम लोनार क्रेटर कहते हैं। यहाँ का सरोवर अपनी अनोखी क्षारीय और लवणीय जल प्रकृति के लिए भी जाना जाता है और इसके चारों ओर हरियाली, पक्षी, जंगल यानी विज्ञान की कहानी के बीच प्रकृति का इतना खूबसूरत संसार। कभी कभी लगता है ना, हमारी धरती के पास भी अपने कितने सारे रहस्य छिपे हुए हैं, और हमारे पास भी बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं क्योंकि आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। हितेंद्र दास गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, अंजू अंधेरी इससे जुड़ चुकी हैं, विश्वास चंदोरकर, और ये मैसेज हमारे पास आया है, नाम इनका नहीं है लेकिन पूछ रहे हैं कि आज आप लोनार क्रेटर की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आज हम लोनार क्रेटर के बारे में ही बात कर रहे हैं। मस्त मुंबई आज चल के तुझे लेके चले, आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM। रजनीकांत पाटिल वाड़वन से जुड़ गए हैं और प्रणव शिंदे, प्रकाश शिंदे साथी हैं। अंबर से गिरा जो एक सितारा खास था, जमीन ने सीने में छुपाया वही एहसास था। लोनार की झील यूं ही नहीं मशहूर है, ये कुदरत का कोई हंसी सा ख्वाब पास था। नीला हरा पानी और शांत ये नजारा, हर दिल में बसता ये खूबसूरत इशारा है। गगन से उतरी जमी पर कोई मूरत हो जैसे, लोनार का सरोवर तो चमकता हुआ सितारा है। इतिहास के पन्नों में जो एक राज छिपा है, उस झील की गहराई में जादू बसा है। देखकर इसका रूप, इसका दिल से हमारा दिल थम सजाए, कुदरत ने यहाँ अपना पूरा हुनर दिया है। वाकई में राकेश माथुर भी जुड़ गए हैं पुणे से, कल्पना राजू उल्हास नगर से, कल्पना राजू वारे हैं ये, पंकज महोड़ भी सुन रहे हैं और ये मैसेज हम तक पहुंचा है प्रमोद चिंचोलकर का, उन्होंने हमें लोनार क्रेटर की खूबसूरत सी तस्वीर भी हम तक पहुंचा दी है। विजेंद्र खटोल अकोला से चाय उन्होंने हम तक पहुंचाई है, शुक्रिया आपका। और यशवंत आडबुटे फूलों के साथ गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, और आप सभी का हमारे साथ इस घंटे में जुड़ने के लिए आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जुड़े रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि ये प्रसारण सिर्फ आप FM रेनबो पर ही रेडियो के माध्यम से नहीं सुन पा रहे हैं, इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं AIR न्यूज़ की ऐप के माध्यम से 24/7 कहीं भी, बस आपको धरती पर होना चाहिए। और साथ ही साथ आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हम तक पहुंचना चाहते हैं तो नंबर नोट कीजिए 8657661071 यानी कि 8657661 इस नंबर पर कीजिए मैसेज और कर सकते हैं आप हमसे अपने दिल की बात।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी न्यूज ऑन एयर ऐप पे आप हमें लगातार सुन सकते हैं. कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई, आज चल के तुझे लेके चलूं साथ है आपकी दोस्त माला इस रविवार की खूबसूरत बारिश से भरी सुबह में. गणपति बाप्पा भी आने को तैयार हैं इसलिए मौसम भी सुहाना हो चला है और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं लोनार क्रेटर की ओर. विज्ञान के बीच सदियों पुरानी आस्था और लोनार की कहानी सिर्फ विज्ञान पर खत्म नहीं होती है. इस क्रेटर के आसपास सदियों पुराने मंदिर भी बने हुए हैं, जैसे दैत्य सूदन मंदिर जिसकी स्थापत्य कला आज भी लोगों को रोककर देखने पर मजबूर कर देती है. यानी एक ही जगह पर उल्का पिंड की कहानी भी है तो प्राचीन साहित्य भी है और लोक आस्था भी. यही तो है भारत, जहां इतिहास और प्रकृति अक्सर एक ही रास्ते पर साथ साथ चलते हुए नजर आते हैं.

ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम और वक्त हो चला है 9:11 और ठीक 26 सेकेंड। मस्त मुंबई आ चल के तुझे लेके चलूं और आज मैं आपको ले जा रही हूँ लोनार क्रिएटर के पास। कभी मन करे कुछ अलग देखने का तो हम अक्सर छुट्टी का मतलब समुद्र, पहाड़ या कोई मशहूर शहर समझ लेते हैं, लेकिन भारत की असली खूबसूरती शायद उन जगहों में छिपी है जिनके बारे में हमने बहुत कम सुना है। लोनार ऐसा ही एक ठिकाना है जहां आप सिर्फ घूमते नहीं हैं, कुछ नया देखकर लौट आते हैं और उसे अपने मन में भी बसा लेते हैं, और साथ ही साथ यहां उतरने वाले रास्ते कुछ जगहों पर कठिन और फिसलन से भरे हुए हो सकते हैं, लेकिन सफर है तो आरामदायक जूते और पानी का साथ रखना तो समझदारी होगी ना। तो अगली बार कोई पूछे कहां चलें, शायद आपका जवाब हो चलो कुछ ऐसा अनदेखा देखते हैं जो किसी ने ना देखा हो, जो किसी ने महसूस ना किया हो। फिलहाल कुछ मैसेज हम तक पहुंचे हैं, गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं और लोनार क्रेटर के बारे में और वहां की झीलों की जो खूबसूरती है उसके बारे में बता रहे हैं हमें प्रणव शिंदे, प्रकाश शिंदे, और एहसास कर रहे हैं कि भाई कितनी खूबसूरत सी जगह है, होकर आए हैं वो यहाँ पर लेकिन पूरे तरीके से नहीं देखा। विजेंद्र घटोल कह रहे हैं कि भाई जानकारी उन्हें अच्छी लग रही है। प्रमोद चिंचोलकर कह रहे हैं कि उन्होंने लोनार के जंगलों में एक नील गाय देखी थी और उसका फोटो भी उन्होंने हम तक पहुंचाया है, कार्यक्रम वो एंजॉय कर रहे हैं। वहीं फिरोज सिगिनपुरिया भी जुड़ गए हैं और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। यशवंत आडमुठे धारा शिव से, वाशी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगर अभी तक आप नहीं गए हैं लोनार क्रेटर को देखने तो ज़रूर जाने की कोशिश कीजिए। इतनी खूबसूरत प्रकृति आपके साथ होगी, आप ऐसा महसूस करेंगे इस सफ़र पर।

0: तो भाई सफर पर तो हम चल ही रहे हैं और साथ में गीत भी गुनगुना रहे हैं, इसीलिए गाना हमने आपके लिए बजाया आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर। और कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, और लेकर हम आपको जा रहे हैं लोनार क्रेटर के पास। और इतनी खूबसूरत जगह है कि आपको एहसास होगा वहां जाकर कि कुछ तो ऐसा है जो हमने शायद कहीं नहीं देखा, क्योंकि जो विशाल गोलाकार निशान आसमान से नीचे आए हुए एस्ट्रॉइड से बना, वो एक अलग ही तरह का अपने और से ऑरा बिखेरता है। तो भाई मुंबई से लोनार और फिर वापस दिल तक लेकर आ जाएगा ये आपको अपने हमारे FM रेनबो के स्टूडियो तक। आज हमने सिर्फ एक जगह की सैर नहीं की है, हमने आसमान से धरती तक की एक कहानी सुनी है। एक उल्का पिंड आया, धरती पर अपनी निशानी छोड़ गया, और हजारों साल बाद भी हम उस निशान के किनारे खड़े होकर उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो सफ़र की खूबसूरती है, हर जगह अपने बारे में कुछ ना कुछ बता जाती है, और ऐसा ही कुछ बताया लोनार क्रेटर ने। इससे पहले कि और बातें मैं आपसे करूं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक बनता है।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM, और बहुत सारे मैसेज आए हैं, सबके नाम शामिल कर लेते हैं। वंदना सूर्यवंशी कालवा से हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रमोद चिंचोलकर तो सुन ही रहे हैं, फिरोज सेगनपुरिया भी, यशवंत आडमुठे, श्रीधर मोजारकर भी। गणपति बप्पा की एक बड़ी खूबसूरत सी जो मूर्ति है उसकी

तस्वीर उन्होंने हम तक पहुंचाई है। दीपा बालकर भी जुड़ गई हैं और लोनार लेक की जो आज बात चल रही है वो उन्हें पसंद आ रही है। पंकज महोड़ भी हमें सुन रहे हैं, उन्हें गीत गाता चल गाना बहुत पसंद आया जिसे आपने सुना जसपाल सिंह की आवाज़ में। और प्रणव शिंदे जो है सुबह का नाश्ता पोहा जो है वो हम तक उन्होंने पहुँचाया है। विजेंद्र घटोल अकोला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आर्यन सोमवंशी जलगांव से और रघुनाथ खनुकर कोल्हापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 9:26 और ठीक 57 सेकंड हो चले हैं, यानी 9:27 हो चले हैं। इस गाने के साथ मैं आपसे ले रही हूँ विदा। लोनार क्रिएटर के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मस्त मुंबई आचल के तुझे लेके चलेगा ये सफर। इस गाने के साथ होता है खत्म। 9:30 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। और माला कहीं नहीं जाने वाली है, बनी रहेगी आपके साथ 10 बजे भी कार्यक्रम नमस्ते भारत के माध्यम से। तो कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए। आपका प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। आइए सुनते हैं हमारा साप्ताहिक प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि पंडित हरिभाव उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 24 मार्च। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जमशेदपुर झारखंड से सुमित कुमार मिश्रा और रिंकी राय। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर।

0: लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक, आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

कुछ आवाजें केवल मनोरंजन का साधन भर नहीं होती, वो भीतर उतरती हैं और मन के किसी शांत कोने में दीपक की तरह जलती रहती हैं। कुछ स्वर केवल संगीत नहीं होते, वो प्रार्थना बनकर उठते हैं और आत्मा तक पहुंचते हैं। कर्नाटक संगीत के आकाश में गूंजते एक ऐसे ही स्वर का नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी। एक ऐसा स्वर जिसमें भक्ति की निर्मलता थी, शास्त्रीय संगीत की गहराई थी और भारतीय संस्कृति की आत्मा का स्पंदन था। जैसे भोर की पहली किरण मंदिर के शिखर को छूकर वातावरण में पवित्र उजास भर देती है, वैसे ही MS सुब्बुलक्ष्मी के कंठ से निकले स्वर सुनने वालों के अंतर मन को पवित्र और प्रकाशित कर देते हैं। उनके लिए राग केवल सुरों का अनुशासन नहीं था, वो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग था। और गायन केवल कला नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति। कर्नाटक संगीत की इस महान साधिका ने अपनी आवाज के माध्यम से देश की सीमाओं को पार किया और भारतीय संगीत की गरिमा को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। वो केवल एक महान गायिका ही नहीं थी, बल्कि भारतीय संगीत, संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवतावादी चेतना की सजीव प्रतीक थी। उन्होंने ईश्वर प्रदत्त अपनी गंधर्व वाणी को कभी व्यावसायिक लिप्सा का साधन नहीं बनने दिया। उन्होंने संगीत को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग, समाज कल्याण के माध्यम और विश्व मंच पर भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को स्थापित करने वाले सशक्त माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया।

मिसेस सुबुलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर सन 1916 को तमिलनाडु के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर मदुरई में हुआ। उनकी माताजी का नाम षणमुखा वदिवु था। वो एक प्रतिष्ठित और निपुण वीणा वादक थीं। इस तरह सुबुलक्ष्मी का पूरा नाम मदुरई षणमुखा वदिवु सुबुलक्ष्मी हुआ। उनके पिता सुब्रमण्य अय्यर एक वकील थे। एमएस सुबुलक्ष्मी के व्यक्तित्व और कलात्मक विकास पर उनकी माताजी और मदुरई के संगीतमय वातावरण की अमिट छाप पड़ी। उनका बचपन मीनाक्षी मंदिर की गलियों में नादस्वरम की धुनों, मंदिरों के भजनों और उनकी माताजी द्वारा बजाई जाने वाली वीणा की झनकार के मध्य व्यतीत हुआ। संगीत उन्हें किसी औपचारिक कक्षा से अधिक अपनी पारिवारिक परंपरा और घर के वातावरण से संस्कार के रूप में प्राप्त हुआ। उनकी माताजी ने बचपन में ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था और बहुत कम उम्र में उन्हें वीणा और कर्नाटक गायकी का कठोर अभ्यास कराना आरंभ कर दिया था। उन्होंने संगीत के पितामह कहे जाने वाले सीमंगुडी श्रीनिवास अय्यर से कर्नाटक गायकी के गूढ़ तत्वों को ग्रहण किया। संगीत के प्रति उनकी लगन इतनी अधिक थी कि उन्होंने केवल कर्नाटक संगीत तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि पंडित नारायण राव व्यास से उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बारीकियां भी सीखीं तथा भारत के संगीत जगत में एक दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह स्थापित हो गईं।

एमएस सुबोलक्ष्मी ने बहुत कम उम्र में ही मंचीय प्रस्तुतियां आरंभ कर दी थीं और शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ और आम श्रोता सभी उनकी प्रतिभा से अत्यंत प्रभावित थे। उनकी विशेषता थी कि वो स्वर, ताल और लय की पूर्ण शुद्धता के साथ कठिन रागों को गाया करती थीं। यही कारण है कि सुनने वालों को ये अंदाजा हो चुका था कि एक महान गायिका का उदय हो चुका है। इस तरह उनकी रिकॉर्डिंग और प्रस्तुतियों का सिलसिला चल पड़ा। उन्होंने मलयाली से लेकर पंजाबी तक भारत की अनेक भाषाओं में गीत रिकॉर्ड किए। सन 1940 में उनका विवाह प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्राम सेनानी, राष्ट्रवादी पत्रकार और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के निकट सहयोगी के सदाशिवम के साथ संपन्न हुआ। सदाशिवम के साथ परिणय सूत्र में बंधने के बाद एमएस सुबोलक्ष्मी के जीवन को एक नया वातावरण मिला। सदाशिवम केवल उनके जीवन साथी नहीं थे, बल्कि उनके सांस्कृतिक और सामाजिक अभियानों के मुख्य मार्गदर्शक भी थे। इस विवाह ने एमएस सुबोलक्ष्मी को सीधे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, महात्मा गांधी के विचारों और तत्कालीन नेताओं के संपर्क में लाकर खड़ा कर दिया। उनका घर स्वतंत्रता संग्राम के रणनीतिकारों और शीर्ष कलाकारों की आवाजाही का केंद्र बन गया। एक कलाकार के रूप में एमएस सुबोलक्ष्मी की सबसे बड़ी विशेषता थी श्रुति शुद्धम, यानी स्वर की निरपेक्ष शुद्धता, और साहित्य भाव यानी शब्दों के भाव की अंतरात्मा से अभिव्यक्ति। उनके गायन में अलौकिक तन्मयता थी, वो सीधे सुनने वालों के हृदय में प्रवेश कर जाती थीं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की कठिन रचनाओं को क्लिष्टता के बंधन से मुक्त कर उसे आम जनमानस के लिए भक्ति का सुगम मार्ग बना दिया।

एमएस सुबुलक्ष्मी के दिव्य स्वर ने भक्ति संगीत को व्यापक तौर पर लोकप्रिय बनाया। उन्होंने दक्षिण भारत के संत कवि अलवार और नायनार के संकीर्तन से लेकर उत्तर भारत के संत कवियों की रचनाओं को देश भर में घर घर तक पहुंचाया। एमएस सुबुलक्ष्मी ने फिल्मों में भी अभिनय किया। इनमें सबसे यादगार है सन 1945 में आई फिल्म मीरा। इसमें उन्होंने मीरा की भूमिका निभाई तथा कई मधुर मीरा के पद गाए। उनके स्वर माधुर्य ने पूरे देश को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। इस तरह उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की भाषाई और सांस्कृतिक सीमाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया। उनके गाए भक्ति संगीत की सूची में ऐसी कई रचनाएं हैं जो कालजयी हैं। उनके द्वारा किया गया विष्णु सहस्रनाम का सस्वर पाठ केवल एक संगीतमय प्रस्तुति नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभूति है। उनकी आवाज में वेंकटेश सुप्रभातम भी एक अनमोल सांस्कृतिक धरोहर है।

समाधिकम्। एमएस सुबुलक्ष्मी ने आंध्र प्रदेश के महान संत कवि अन्नमाचार्य की रचनाओं को गाकर उसे व्यापक लोकप्रियता दिलाई और जब जगतगुरु आदि शंकराचार्य रचित वैराग्य और भक्ति से परिपूर्ण स्रोत भज गोविंदम को एमएस सुबुलक्ष्मी ने स्वर और भाव प्रदान किया तो जैसे हर मन इस ज्ञान के आलोक से प्रकाशित हो उठा।

एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने कई वैश्विक मंचों पर भारत के समृद्ध शास्त्रीय संगीत की ध्वजा फहराई और पश्चिमी दुनिया को भारतीय संगीत के आध्यात्मिक और शास्त्रीय वैविध्य से परिचित करवाया। उनके

राष्ट्रीय प्रदर्शन में सबसे ऐतिहासिक और अविस्मरणीय क्षण 23 अक्टूबर सन 1966 का था, जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी दिव्य प्रस्तुति दी। इस सभा में गाने वाली वो पहली भारतीय कलाकार थीं। ये वो दौर था जब पूरा विश्व शीत युद्ध के तनाव से गुजर रहा था। इस कार्यक्रम में अपनी तमाम प्रस्तुतियों के बाद उन्होंने विशेष प्रार्थना गाई, मैत्रीम भजता। ये केवल एक गीत नहीं था, ये पूरे विश्व के लिए भारत का शाश्वत शांति संदेश था, जिसमें सबके हृदय को जीतने वाले मैत्री भाव की स्थापना का आह्वान था।

एमएस सुबुलक्ष्मी का नाम उन चुनिंदा कलाकारों की सूची में शामिल है जिन्होंने अपनी कला से अर्जित अधिकांश धन समाज कल्याण के लिए दान कर दिया। बताया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 200 चैरिटी कॉन्सर्ट किए। वो एक विलक्षण कलाकार थीं। यही कारण है कि उनके समय के दिग्गज कलाकारों ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने उन्हें सुस्वर लक्ष्मी कहा। किशोरी अमोनकर ने उन्हें संगीत का आठवां सुर कहा और स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने उन्हें तपस्विनी कहा। महात्मा गांधी भी उनके बड़े प्रशंसक थे। गांधी जी के 78वें जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली में एक प्रार्थना सभा रखी गई थी। गांधी जी ने अपनी इच्छा जताई कि वो इस दिन एमएस सुब्बुलक्ष्मी के स्वर में मीराबाई का भजन हरि तुम हरो जन की भीड़ सुनना चाहते हैं। जब ये संदेश चेन्नई पहुंचा तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने विनम्रता पूर्वक संदेश भिजवाया कि उन्हें ये भजन पूरी तरह याद नहीं है और इतनी जल्दी इसे गाकर वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगी। गांधी जी को ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि यदि वो इसे केवल बोल भी दें तो भी वो मुझे किसी अन्य के गायन से अधिक शांति और आनंद देगा। गांधी जी के इन शब्दों को सुनकर एमएस सुब्बुलक्ष्मी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने तुरंत ये भजन सीखा और रिकॉर्ड किया और 2 अक्टूबर की सुबह ये भजन दिल्ली पहुंचाया गया और प्रार्थना सभा में बजा। लेकिन ये भी कैसा संयोग था कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई। उस समय ऑल इंडिया रेडियो ने इस दुखद समाचार की सूचना देने के तुरंत बाद एमएस सुब्बुलक्ष्मी द्वारा गाया गया यही भजन प्रसारित किया।

एमएस सुबुलक्ष्मी एक विलक्षण कलाकार थीं। यही कारण है कि उन्हें अनेक पुरस्कारों से विभूषित किया गया। कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च सम्मान संगीत कलानिधि प्राप्त करने वाली वो पहली महिला कलाकार हैं। वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतज्ञ हैं। इसके साथ ही भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली वो पहली संगीतज्ञ हैं। संगीत जगत को अपने अनगिनत गीतों की अनमोल विरासत सौंपकर 11 दिसंबर सन 2004 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी विलक्षण स्वर साधिका को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, एमएस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataNkaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। वक्त हो चला है 10:07। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में मलेशिया के निवेश, व्यापार और उद्योग मंत्री दातुक सैरी जोहारी अब्दुल गनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में भारत और मलेशिया ने आर्थिक साझेदारी की समीक्षा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना से श्री गणेश आरोग्याचा अभियान कल से 25 सितंबर तक राज्यभर गणेश उत्सव के दौरान आयोजित किया जाएगा। इन शिविरों में पर्याप्त चिकित्सा अधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ, जांच उपकरण और दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 144 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं। तो भाई दोस्तों, नमस्ते भारत शुरू हो चुका है, मेरा दिल मेरी बातें, रविवार की सुबह है और आज आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब शायद किसी दिन आपके बहुत काम आएगा। और अगर आपके सामने कोई अचानक बेहोश होकर गिर पड़े तो आप क्या करेंगे? घबराएंगे, भीड़ लगाएंगे या मदद के लिए आगे बढ़ेंगे? मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त माला, आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो पर। और कल 12 सितंबर था वर्ल्ड फर्स्ट एड डे और आज 13 सितंबर को वर्ल्ड सेप्सिस डे भी मनाया जाता है। तो आज बात किसी उपदेश की नहीं, उन छोटी छोटी सी जानकारियों की, मेरा दिल मेरी बातें में, जो सही समय पर किसी के लिए बहुत बहुत बड़ी मदद बन सकती है।

0: तो भाई आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें माला के साथ आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। और आप जुड़ भी चुके हैं हमारे साथ और मैसेजेस भी आने शुरू हो चुके हैं। तो भाई आज है 13 सितंबर और वर्ल्ड सेप्सिस डे ये कहलाता है। फर्स्ट एड, वैसे जैसे हमने आपसे बात की कल वर्ल्ड फर्स्ट एड डे था, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर बन जाएं, इसका मतलब ये है कि पेशेवर चिकित्सा सहायता पहुंचने तक सही और सुरक्षित मदद करना हम जान लें। मसलन किसी को चोट लग गई है तो सबसे पहले अपनी और उसकी सुरक्षा को देख लेना, ज़रूरत हो तो आपातकालीन यानी इमरजेंसी मदद बुला लेना और बिना जानकारी के कोई दवा या जोखिम भरा उपचार बिल्कुल भी ना करना। ये बातें बहुत मायने रखती हैं। कभी सड़क पर हादसा, कभी घर में जल जाना, कभी अचानक बेहोशी आना, ऐसे पल में हमारी पहली प्रतिक्रिया बहुत कुछ तय कर सकती है, अच्छा या बुरा। और मुंबई जैसे तेज रफ्तार शहर में, जहां हम हर दिन सड़कों, ट्रेनों और भीड़ के बीच में रहते हैं, ये जानकारी सिर्फ किताब में रहने वाली चीज नहीं है, इसके बारे में जानना भी जरूरी है। सोचिए अगर उस एक पल में आप घबराने की बजाय समझदारी से काम लेंगे तो शायद यही आपकी सबसे ज्यादा काम की जानकारी होगी और वो देने की कोशिश कर रही है आपको आपकी दोस्त माला। तो जिंदगी में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेना और उसे अपना भी लेना समय आने पर बहुत जरूरी होता है। कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें, साथ बनी हुई है लगातार आपके आपकी दोस्त माला। और आप भी हमारे साथ बने हुए हैं तो आपके नाम ले लेते हैं ताकि आप ये ना सोचें कि हम आपको भूल गए, क्योंकि हम आपको कभी नहीं भूलते हैं। ज्योति खटोल अकोला से कह रही हैं कि नमस्ते भारत, वो इंजॉय कर रही हैं। रजनीकांत पाटिल, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल वाड़वन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकांक्षा मनुष सिन्हा, पीले फूल जो उन्होंने हम तक पहुंचाए हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। अहमदाबाद से इन्होंने हमें मैसेज किया है, विजेंद्र खटोल अकोला से, और एक गाने की इन्होंने फरमाइश हम तक की है, वो गाना हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। लेकिन पंकज मोहड़ जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई आज अभिनेत्री महिमा चौधरी का जन्मदिन है तो उनके लिए वो एक गाना प्ले करना चाहते हैं, तो वो भी हम आपके लिए प्ले करेंगे पंकज जी। और महिमा चौधरी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फिर उस सेकेंड पुरिया कह रहे हैं कि भाई अगर जो है सबसे पहले वो ये चेक करेंगे कि भाई पानी पिला देंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो सकते हैं, कोशिश करेंगे कि पानी ज़रूर पिलाएं और फिर आसपास जो भी अस्पताल होगा वो वहाँ पर उन्हें लेकर जाएंगे। और दीपा पालकर कह रही हैं यदि हमारे सामने कोई इंसान बेहोश होकर गिर गया तो हमें जो भी आता है उसके हिसाब से हम उसकी सहायता करने की कोशिश करेंगे और डॉक्टर को भी बुलाएंगे। वहीं ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून भी जुड़ गई हैं और ताल फिल्म का गाना हम आपके लिए ज़रूर प्ले करेंगे जिसकी फरमाइश हमें पहुँचाई है विजेंद्र घटोल ने, पर और नाम बाद में लेंगे। इससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: तो भाई हम भी अपना वादा बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर हमने कहा था आपके नाम, सभी के नाम जरूर शामिल करेंगे। तो भाई ये मैसेज हमारे पास प्रणव शिंदे और प्रकाश शिंदे की तरफ से आया। वो कह रहे हैं कि भाई नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें और मेरा दिल इंसानियत के नाते उस बेहोश इंसान की मदद करूंगा मैं, और उस इंसान को सबसे पहले डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, और इंसानियत ही असली धर्म है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि आज जो है महिमा चौधरी जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक फिल्म का गाना दाग द फायर का इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है, तो हम डेफिनेटली वो गाना प्ले करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ चुकी है पंकज महोड़ की तरफ से। और ये जो मैसेज हमारे पास आया है वो कल सुबाई शिखरा हुन अकोले अहल्यानगर से राजीव देशमुख का है, और कार्यक्रम वो सुन रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। और ये मैसेज जो आदर्श कनौजिया की तरफ से आया है वो है मुंबई दादर से, रजनीकांत पाटिल वाड़वन जुड़े ही हुए हैं हमारे, वाड़वन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आकांक्षा मनोज सिन्हा जुड़ी हुई हैं अहमदाबाद से, दीपा पालकर भी सुन रही हैं हमें, एक फरमाइश उन्होंने भी हम तक पहुंचाई है। तो दीपा जी कोशिश करेंगे पूरी पूरी कि आपकी जो फरमाइश है वो हम ज़रूर पूरी करें। और बाबा दादर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिलीप पाटिल भी हमें सुन रहे हैं, श्रेय राउत, मिलेश गजानन राउत, आर्य मिलेश राउत टिघरेपाड़ा से, योगेश गजानन भी हमारे साथ जुड़े हैं, कुणाल महेश राउत भी सुन रहे हैं। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश चौहान भी अहमदाबाद से हमें सुन रहे हैं, रघुनाथ खनुकर कोल्हापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजेंद्र घटोल तो जुड़े हुए हैं। और ये मैसेज है हमारे पास मास्टर अशोक वर्मा का, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से, लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। फरमाइश आपने भी हम तक पहुंचाई है महिमा चौधरी जी के जन्मदिन पर, उनको शुभकामनाएं हम दे ही रहे हैं, गाना जरूर प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

तो भाई अक्सर जब हम सड़क पर जा रहे होते हैं और कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो हमें अनजाने लोग मिल जाते हैं, और ये हमारे ऊपर होता है कि हम उस समय मानव होते हैं कि दानव, क्या सोचते हैं हम, और आगे बढ़ जाते हैं या मदद के लिए हाथ बढ़ा देते हैं। तो भाई आज है वर्ल्ड सेप्सिस डे, और एक ऐसी जानकारी जिसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सुनने में मेडिकल तो लगता है ये वर्ल्ड सेप्सिस, लेकिन इसकी जानकारी आम इंसान के लिए, हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी संक्रमण के प्रति शरीर की अत्यधिक प्रक्रिया, जब हमारी बॉडी को, हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स को नुकसान पहुँचाने लगे, तो ये जीवन के लिए एक गंभीर स्थिति बन जाती है। इससे क्या होता है, सेप्सिस जब होता है तो तेज बुखार आता है, बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, तेज हो जाती है हमारी सांसें और धड़कन, और असामान्य सा भ्रम हमें होता है कि कुछ अलग हो रहा है, और बहुत सारी कमजोरी भी आपको लगने लगेगी। ऐसे लक्षण इसके होते हैं, और खासकर अगर व्यक्ति पहले से ही किसी और इन्फेक्शन से यानी संक्रमण से जूझ रहा हो तो भाई सेप्सिस में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ऐसी आशंका हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आज का मेरा दिल मेरी बातें में ये बात याद रखिए कि हर बुखार से डरना नहीं है, लेकिन गंभीर लक्षणों को नजरअंदाज भी नहीं करना है। तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है और उसका इलाज कराना जरूरी है, और अगर और अच्छा होना है तो हमारे पास भी आना जरूरी है। आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें, साथ बनी हुई है आपके आपकी दोस्त माला। और कहते हैं ना कि संगीत से ऐसा महसूस होता है कि हमारे आसपास ईश्वर है, खुदा है, भगवान है।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: और आप जरा अपने आसपास देखिए, हम में से कितने लोग घर में दवाइयां तो रखते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि इमरजेंसी में फोन आखिर किसे करना है। कितने लोग किसी हादसे की जगह पहुंचकर मदद करने की बजाय वीडियो बनाने लग जाते हैं और कितने लोग चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि अगर आज आपके सामने ऐसी खुद एक ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या आप मदद करने के लिए तैयार होंगे, या शायद किसी फर्स्ट एड कोर्स में सीखी हुई एक छोटी सी बात, किसी इमरजेंसी नंबर की जानकारी या सही समय पर अस्पताल पहुंचाने का निर्णय बहुत मायने रखता है। इसलिए आज की बात अपने तक मत रखिएगा, घर में बच्चों, माता पिता और परिवार के साथ भी इमरजेंसी में जो तैयारियां होती हैं उन पर बात ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो अपना हो, चाहे वो घर के बाहर मिला कोई भी शख्स हो। अगर आप उसके लिए ज़िंदगी बन सकते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके लिए ज़िंदगी बनने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए।

भाई आपका दिल धड़क रहा है कि नहीं, ये इस बात से पता चलेगा कि भाई मुश्किल घड़ी में आप क्या करेंगे। शायद जवाब तो यही होना चाहिए कि मदद सिर्फ दिल से करने की चीज नहीं, समझदारी से करने की भी कला है। फर्स्ट एड हमें तैयार रखना रहना सिखाता है और सेप्सिस जैसी स्थितियों की जानकारी हमें ये समझाती है कि कब इंतजार नहीं करना चाहिए। तो इस रविवार मेरे साथ अपनी एक छोटी सी जो है प्रतिज्ञा कीजिए या फिर भरोसा दिलाइए कि आपात स्थिति में घबराहट से पहले जानकारी को जगा देंगे और जरूरत पड़ने पर सही मदद तक पहुंचने में किसी का हाथ जरूर थामेंगे। माला है आपके साथ, फिलहाल इजाजत लेने का जो है वक्त हो चला है। नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें से, लेकिन ये वादा रहा कि आपसे होगी जल्द ही मुलाकात। जाने से पहले इतने सारे मैसेजेस जो हम तक पहुंचे हैं वो ले लेते हैं। पंकज मोहड का मैसेज हम तक पहुंचा है, सही समय में उस व्यक्ति को अच्छी जगह पर पहुंचाने की जरूरत होती है और उस जगह पहुंचने की मैं भी कोशिश करूंगा। जयंत मोरे नासिक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणव शिंदे, प्रकाश शिंदे भी, तमाशा देखने वालों की भीड़ में तो कोई आगे आया था, किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने फर्ज निभाया, उम्मीदें छूट रही थी, तभी बढ़ाए एक अजनबी ने हाथ, मदद का लगा कि इंसानियत आज फिर से जी उठी। विजेंद्र खटोल अकोला से, प्रमोद चिंचोलकर, ये मैसेज हमारे पास आया है सूरज का पुणे सिटी से, अजय साकरे इंदौर से, विजय मकमारा दहीसर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये मैसेज किनका है, इनका है नाम इन्होंने नहीं लिखा है, लिखा है अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, भाई राजकुमार, जिला खरगोन, सनावद मध्य प्रदेश से, सुदामा नगर खंडवा से, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। नमिता स्टूडियो में आ चुकी हैं, वो आपसे जरूर मिलेंगी, बहुत सारी बातें और प्यारे प्यारे गाने जरूर सुनाएंगी। फिलहाल अपनी दोस्त माला को दीजिए इजाजत, पर आप बने रहिए FM रेनबो पर। आपको छोड़ जा रही हूँ इस आखिरी गाने के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 FM पर। वक्त हो चला है 10:57 और ठीक 59 सेकेंड, 10:58 हो चले हैं। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें। ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने से संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित आज मुंबई के एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यान आरती नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह दोपहर में बांद्रा में रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद GJEPC के पुरस्कार सम्मेलन में शामिल होंगे। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 FM पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, ये तो हम जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी मन की बात में जिन विषयों का उल्लेख करते हैं, जिन हस्तियों का वो जिक्र करते हैं, उन्हीं को हम इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करते हैं। उन विषयों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया स्वनिधि योजना का। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हम सभी के समक्ष है। आत्मनिर्भर भारत के पावन संकल्प को धरातल पर साकार करती पीएम स्वनिधि योजना ने अनगिनत छोटे व्यवसायियों के जीवन में उम्मीद का एक नया सवेरा जगाया। आज हमारे बीच एक ऐसी ही कर्मठ और स्वाभिमानी लाभार्थी उपस्थित हैं, साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि पीएम स्वनिधि योजना आखिर क्या है, किस प्रकार से इसका लाभ लिया जा सकता है और कैसे ये लाखों लोगों के जीवन में एक उम्मीद जगा रही है। तो मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ हैं श्री शैलेश कुमार, आप महाप्रबंधक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद नीलम जी।
0: हमारे साथ हैं श्री राजेश कुमार, आप महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक से। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद नीलम जी।
0: और हमारे साथ हैं श्रीमती बबीता शर्मा, जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। बबीता जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: आपको सबको मेरा नमस्कार है और सबको धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं सबके बीच में आमंत्रित हो पाई।
0: तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं अपने विशेषज्ञों से, हम इनके जवाब जानेंगे और साथ ही योजना के बारे में आज हमारी जानकारी बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने इस योजना यानी स्वनिधि योजना का उल्लेख किया है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी

0: पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
1: तो श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आइए अब हम अपने उन सवालों के जवाब जानते हैं जिनके कुछ जवाब हमारे पास पहले से हैं, लेकिन आज क्योंकि हमारे विशेषज्ञ हमारे बीच हैं, तो ये हमें बताएंगे कि किस तरह से छोटी छोटी मदद लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाती है और जब जिंदगियां बदलती हैं तब देश किस तरह से बदलते हैं। तो शैलेश जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जब हम कहते हैं पीएम स्वनिधि योजना, तो किस प्रकार से आप इस योजना के बारे में बताएंगे, कैसे रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के साथ ये जुड़ी है योजना?
2: धन्यवाद नीलम जी मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए, और मैं इसमें बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने लोगों के साथ दिन रात मेहनत करते हैं सड़कों पे, फुटपाथ पे, गलियों पे, और उनको हम कैसे और उनका जीवन स्तर हम उठा सकते हैं और उन्हें और समृद्ध बना सकते हैं। सो इस संदर्भ में आपने हमें मौका दिया है कि हम इस योजना को उनके बीच कैसे सरलतम रूप से प्रस्तुत कर पाए। प्रधानमंत्री महोदय ने इस पे 2 उदाहरण दिए हैं अपने मन की बात प्रोग्राम में, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा। यह योजना बहुत ही सरल है। जो भी वेंडिंग का काम करते हैं, हॉकर्स हैं, किसी भी सड़क मोहल्ले गली में काम करते हैं, जैसा आपने कहा कि कुछ रेहड़ी और जो ठेला लगाते हैं या छोटे मोटे खोखे लगाते हैं, वो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, निबंधन कराना पड़ेगा। जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हम लोग बोलते हैं, वहां उनको एक प्रमाण पत्र जारी होगा वेंडिंग का, और उसके बाद केवल एक आधार की जरूरत है। और कुछ राज्य हैं जैसे असम और मेघालय, वहां पे मतदाता पहचान पत्र की जरूरत है
1: जी।
2: बस इतने ही कागजात के आधार पे वो आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए एक पोर्टल भी है और ऐप की भी सुविधा है, उसके थ्रू वो आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो स्थानीय निकाय के लोग होते हैं, शहरी स्थानीय निकाय के लोग, वो लोग भी उनकी मदद करते हैं अप्लाई करने में, आवेदन करने में। और ये लोन आज के डेट में पूरी तरह डिजिटल हो गया है, उन्हें किसी शाखा में जाने की भी जरूरत नहीं है, वो अपना जो दिन भर का काम है वो

0: कर सकते हैं और साथ में वो लोन भी ले सकते हैं। उसमें केवल आधार में जो मोबाइल नंबर रहता है उस पे कुछ ओटीपी आएगा और वो ओटीपी को डाल करके वो अप्रूवल मिल जाता है और खाते में उनके ये पैसा आ जाता है। तीन चरण में ये योजना है। पहले चरण में हम अब 15,000 रुपये तक देते हैं
1: जी,
0: और इसमें ब्याज की भी चिंता नहीं करनी है। ब्याज में 7% की सब्सिडी, यानी अगर आपका जो भी ब्याज लग रहा है उसमें 7% जो सब्सिडी है वो सरकार देती है, और 15,000 का जो ऋण मिलता है उसे चुकाने के लिए लगभग 12 महीने का समय मिलता है। और इसको जो है वो चाहे तो इसका अर्ली भुगतान भी कर सकते हैं, और वह मिनिमम 6 महीना है। 6 महीने के बाद या 12 महीने के बाद इसका भुगतान करने के बाद दूसरे चरण का लोन मिल सकता है, और वो 15,000 के बाद जो अगले चरण का लोन मिलेगा वो 25,000 का होगा
1: जी।
0: और अगर वो उसे भी चुका देंगे उसके लिए 18 महीने का समय मिलता है। फिर जो अगले चरण का जो ऋण मिलेगा अब वो 30,000 से बढ़ के 50,000 हो गया है, और इसमें क्रेडिट कार्ड की भी अब सुविधा है। अब क्रेडिट कार्ड का भी लिमिट मिलता है, ताकि वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो होलसेलर हैं, जो थोक व्यापारी हैं, उनसे नॉर्मली ये लोग अपना सामान खरीदते हैं जो बेचते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अपने थोक विक्रेता से जिनके यहाँ से ये अपना सामान लाते हैं वो क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान कर सकते हैं
1: जी। मैं राजेश जी आपसे जानना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि परिवार के एक से ज्यादा सदस्य इस तरह का काम कर रहे होते हैं, तो अगर किसी एक व्यक्ति ने बैंक से स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण लिया है तो क्या अन्य सदस्यों को भी मिल सकता है?
2: जैसा कि शैलेश जी ने मुक्त जो योजना है उसका पूरा पूरा बताया है
1: जी।
2: इसमें जैसा कि उन्होंने कहा कि आधार कार्ड, और वो आधार कार्ड मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए, और एक COB जिसको सर्टिफिकेट ऑफ बेंडिंग कहते हैं, जो अर्बन लोकल बॉडी शहरी स्थानीय निकाय करती है। अगर घर के सदस्य अलग अलग कार्य में लगे हैं तो निश्चित रूप से वो लाभान्वित हो सकते हैं, उनकी पात्रता है इसमें
1: जी।
2: सबसे बड़ी जो एक महत्वपूर्ण काम हुआ PM स्वनिधि लाने का, इसके द्वारा जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल ग्रुप था जिनको कोई बैंक में खाता तो है बट जानकारी नहीं थी, उनको जोड़ा गया, तो उनको एक रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें कि अर्बन लोकल बॉडी का बहुत बड़ी भूमिका है, और उसके बाद बैंक की भूमिका है कि उनको हैंड होल्डिंग करे, कि डिजिटल से अवेयरनेस, चाहे वो लोन देते वक्त जब हम देते हैं लोन तो उनको QR कोड भी देते हैं, तो बैंकों की जो भूमिका रही है ना वो डिजिटल अवेयरनेस में बहुत ही सक्रिय रूप से उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किया, ताकि आप देखिए कि हर ठेले खोमचे शॉप पे आपको QR कोड हर बैंक का मिलेगा, और कितनी सुविधा हो गई है। हमारे लोग हो सकता है कम पढ़े लिखे हों, लेकिन उनको जब ये हैंड होल्डिंग उनके साथ जो काम किया गया तो वो उसमें भी डिजिटल में भी बहुत ही सफल हुआ। तो ये सब PM स्वनिधि, जो कहते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर निधि, तो इसका मुख्य काम यही था कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, वह जागरूकता कैसे लाई जाए, चाहे वो डिजिटल हो या बैंकिंग से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के बारे में हो
1: जी।
2: तो अर्बन लोकल बॉडी और बैंक की बहुत बड़ी भूमिका रही इसको सफल बनाने में, और इसको आगे भी ले जाएंगे। तो मेरा क्या है कि लोग को बताने पर, हैंड होल्डिंग करने पर वो सब समझदारी के अंदर आ जाती है, जो कि इसको सफल बनाया है।
1: चाहे शुरुआत में वो जाना चाहे एक बार, लेकिन जब वो समझ जाते हैं पूरी प्रक्रिया तो आसान प्रक्रिया है,
2: बहुत ही आसान,
1: और बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से ऋण ले सकते हैं और उसके किस्त भी चुका सकते हैं जी। ये आपने बताया बबीता जी, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपका नाम लिया है, आपका जिक्र किया है, और आपके नाम से बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए हैं, प्रेरित हुए हैं। आप बताएं कि लोग किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या बात आपसे कर रहे हैं आजकल?
3: मेरे पास बहुत कॉल आते हैं
1: जी,
3: जैसे DM जी से मिल के आई हूँ तो उन्होंने मेरा सम्मान किया है, और डोडा विभाग से जहाँ से मैं ये योजना का मुझे लाभ मिला तो वहाँ भी मुझको सम्मानित किया गया था। तो मैं तो सभी लोगों से यही कहूंगी कि इस लाभ को लेने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। किसी को भी इतनी दिक्कत है कि मतलब छोटे छोटे लोन नहीं ले पाते, पहले नहीं मिलता था, मुझे भी नहीं मिलता था कि गारंटर जरूर चाहिए था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अपना आधार कार्ड ले जाकर और एक पीला कार्ड बनता है जो लाभार्थी का बनता है, वो बहुत जरूरी है, उसको लेकर अगर जाएंगे तो लोन बहुत जल्दी से अप्लाई होता है, कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है, और मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ। तो मैं तो यही चाहूंगी अगर आप किसी भी को भी योजना चाहिए तो अपना पीला कार्ड और आधार कार्ड लेकर जरूर जाएं
1: जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप अपना काम कर रही थी तब शुरुआत में किस तरह की दिक्कतें आई, कैसी परेशानी?

0: परेशानी आई?
1: मैंने लॉकडाउन से पहले जब कोरोना काल हुआ था उस टाइम पे मेरा काम था
0: जी,
1: लेकिन कोरोना काल आने के दौरान मेरा काम बिल्कुल बंद हो चुका था
0: जी।
1: तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो लेकिन एक मेरे भाई हैं जो डोडा विभाग में ही काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक पीला कार्ड बन रहा है बहन, उसको बनवा ले और उससे तुझे थोड़ी सहायता मिलेगी। तो मैं पीला कार्ड बनवाने के लिए मैं गई थी डोडा विभाग में, तभी मुझे सारी टीम ने मुझे समझाया कि इससे 10,000 रुपए का लोन लेकर आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं
0: जी।
1: तो मैंने 10,000 का लोन लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और मेरा काम थोड़ा अच्छे से चला।
2: अच्छे से चला जी, बहुत अच्छी बात है। आपसे और भी मैं सवाल करूंगी। ये बताइए कि आप अपनी पसंद का कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनवा रही हैं?
1: मेरी पसंद का गाना है मदर इंडिया मूवी का, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।
2: आपने बहुत ही प्रेरित करने वाला गाना चुना है। लीजिए, आपकी पसंद का यही गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। हमारे विशेषज्ञ इस समय हमारे साथ हैं। हमारे साथ श्री राजेश जी हैं, आप महाप्रबंधक, शैलेश जी महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और श्री राजेश कुमार महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक से। और हमारे साथ इस योजना की लाभार्थी हैं श्रीमती बबीता शर्मा। शैलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बबीता जी ने जिक्र किया पीले कार्ड का, क्या ये वही वेंडर्स कार्ड है जिसकी आप उल्लेख कर रहे थे?
1: ये अर्बन लोकल बॉडीज इशू करती है, जो शहरी स्थानीय निकाय हैं वो इशू करते हैं
0: जी।
1: लेकिन अब इस योजना का विस्तार जो है शहरों से निकलकर छोटे छोटे कस्बों में भी जा रहा है
0: जी।
1: सो वहाँ पे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनको दिया गया है कि वो एक LOR इशू कर सकते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो वैसे जगहों के लिए जहाँ अर्बन लोकल बॉडीज नहीं है, वहाँ पे जो वीडियोस LOR इशू कर रहे हैं यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यानी अनुशंसा पत्र जो इशू कर रहे हैं
0: जी,
1: उसके आधार पे भी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या हॉकर्स हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है
0: जी। जैसा कि बबीता जी ने भी जिक्र किया, पहले ये धारणा थी कि अगर हमें बैंक से लोन चाहिए तो हमें किसी ना किसी तरह की गारंटी जो है वो देनी पड़ेगी और ये आश्वासन देना पड़ेगा बैंक को कि हम आपका लोन जरूर चुकाएंगे। मैं विशेष तौर से आपसे जानना चाहूंगी,

0: स्वनिधि योजना से जुड़ी क्या इस तरह की कोई नियम और शर्त है?
1: बिल्कुल नहीं, ना ही किसी की गारंटी देनी है, ना ही कुछ भी आपको अपना संपत्ति या कुछ भी बंधक में रखना है। और जो लोग ठेला वगैरह चलाते हैं, वो ठेला भी उसमें भी कुछ लागत लगती है उनकी, तो उस पे भी कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता है
0: जी।
1: ना ही मॉर्गेज क्रिएट होता है, ना ही हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट होता है, कुछ भी नहीं होता है। वो पूरी तरह से उनके खाते में ये पैसा मिल जाता है। जैसे बबीता जी ने बताया कि इन्हें 10,000 का लोन पहली बार में मिला था
0: जी।
1: अब ये राशि बढ़कर 10,000 से 15,000 हो गई है। और जैसे कि राजेश जी ने बताया कि हर वेंडर्स के पास हम लोग QR कोड लगा रहे हैं, ताकि जो भी वो खुदरा बिक्री करते हैं उसका लेन देन जो है डिजिटली हो जाए
0: जी।
1: तो उस पे भी उन्हें कैशबैक मिलता है। और जिस थोक विक्रेता से वो अपना माल खरीदते हैं
0: जी,
1: उसको भी अगर वो डिजिटल लेन देन करते हैं तो वहां पर भी कैशबैक है। वहां पे भी 2,000 रुपए के ऊपर के ट्रांजेक्शन पे उनको कैशबैक मिलता है
0: जी। यहाँ मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि किन्हीं परिस्थितियों में अगर जिसने ऋण लिया है वो ऋण ना चुकता कर पाए बैंक का, तो ऐसे में क्या होता है? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या कोई दंड का प्रावधान है?
1: इसमें जैसा आपने कहा कि कोई गारंटी लगती है कि नहीं लगती है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की एक संस्था है CGTMSE
0: जी,
1: जो SIDBI के द्वारा प्रमोटेड है, प्रायोजित है, तो यहाँ पे सरकार इसका गारंटी फी देती है इस संस्था को, तो ये ऋण जो है उस संस्था के द्वारा गारंटीड रहती है। जब इसमें डिफॉल्ट होता है या लोग नहीं चुका पाते हैं, उसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं कि ये अकाउंट NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया
0: जी,
1: तो वैसे केस में बैंक को कुछ पैसा, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ पैसा उस गारंटी फी के बदले में, वो जो कंपनी जो CGTMSE जो गारंटी प्रदान कर रही है
0: जी,
1: उससे कुछ पैसा बैंकों को मिल जाता।
0: लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती।
2: बिल्कुल, ऐड करना चाहूंगा कि बैंक का लोन खराब होगा, लेकिन सबसे बड़ी जागरूकता की बात है, इस आकाशवाणी के माध्यम से सारे श्रोताओं को बताऊंगा कि किसी भी लोन में भी हम सुनने में भी उस तरह से कि आपका जो CIC है उसमें डिफॉल्ट अगर आता है तो भविष्य में आपको कोई भी ऋण लेने से आपको शायद बाधा पहुंचे
0: जी।
2: तो इसलिए है कि जागरूकता की 10,000 नहीं, 15,000, 25,000, 50,000 नहीं, उसके आगे भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध है
0: जी।
2: तो जो लोग सफलतापूर्वक इसको पुनर्भुगतान करते हैं उनका एक क्रेडिट हिस्ट्री तैयार होता है जिससे उनको आगे लोन लेने में सहायता मिलती है। अगर उन्होंने पहला लोन खराब कर लिया या इसमें किसी भी स्तर पे खराब किया तो उनका जो सिविल स्कोर या CIC बोलते हैं
0: जी,
2: जो हिस्ट्री है क्रेडिट की, उसमें डिफॉल्ट दिखेगा तो आगे लोन लेने में उनको असुविधा होगी।
0: यानी अगर नियमों का पालन करते हुए सही समय पर लोन चुकाते हैं तो आगे एक बहुत बड़ी राशि भी मिल सकती है और वो बड़ा काम कर सकते हैं। और अगर परिस्थिति वश कभी ऐसा हो जाता है कि आप नहीं चुका पाए तो उसका आगे फिर नुकसान हो सकता है जी।
1: नीलम जी, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो सरकार के द्वारा इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिलना है जो 7% है
0: जी,
1: वो सब्सिडी का फायदा भी तभी मिलेगा जब आप समय से ऋण को चुकाते हैं। और इसमें जो CIC में जो उनका डिफॉल्ट नजर आता है उसको कह सकते हैं कि मार्केट में आपकी साख चली गई
0: जी। बिल्कुल,
1: तो आप विश्वास खो जाते हैं मार्केट का, और ये सब डेटा जो है डिजिटली अवेलेबल होगा। सो जितने भी फॉर्मल सेक्टर के लेंडर हैं वो हमेशा कोई भी आवेदन अगर आपके पास आता है ऋण का तो उसको स्वीकृति करने के पहले उस डेटाबेस को देखते हैं
0: जी।
1: तो वहां पे अड़चन आएगी, वहां पे बाधा आएगी कि उनका रिकॉर्ड में नजर आएगा कि ये इस लोन में इन्होंने डिफॉल्ट किया था, तो यहाँ पे साख जो है आपकी गिर जाएगी
0: जी। यानी बहुत सरल तो इस विधि को रखा गया है, लेकिन इसमें विश्वसनीयता बनी रहे इसका भी ध्यान रखा गया है। और यदि अपने काम को लेकर कोई गंभीर हो, सच में उसे जरूरत है, तभी वो लोन के लिए अप्लाई करे। यहाँ मैं शैलेश जी आपसे आपकी पसंद का कोई गाना जानना चाहूंगी। हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना आप सुनवा रहे हैं?
1: लाल पत्थर फिल्म का है, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, ये
0: जी
1: विनोद मेहरा पे फिल्म आया
0: जी, वो पियानो बजा रहे हैं इस गाने में। ठीक है, तो हम यही गाना सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए आपने बताया कि QR कोड आप देते हैं जो भी वेंडर्स हैं उनको, ऐसे में ये बताएं कि बैंक में आवेदन प्राप्त होने के बाद लोन स्वीकृति जो होती है और जो वितरण होता है उसमें लगभग कितना समय लगता है, और कई बार हमारे जो वेंडर्स होते हैं वो ऐसी स्थिति में भी होते हैं कि बहुत ज्यादा लिखना पढ़ना वो नहीं जानते हैं, तो क्या बैंक की ओर से उन्हें कोई इस तरह की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है कि उनकी ओर से ये काम बैंक स्वयं कर दे?
1: जहां तक बात है कि लोन का डिजिटल होने में, अगर जिस बैंक ने स्वनिधि योजना जो है उसको अगर डिजिटल में कर लिया
0: जी,
1: जो तीनों चरण हैं इसके, प्रथम द्वितीय और जिसमें अलग अलग राशि का लोन दिया जाता है, तो इसमें 1 से 2 दिन लगता है
0: जी।
1: और अगर उससे हटकर ऑफलाइन मोड में, जैसे अर्बन लोकल बॉडी के पोर्टल पे एप्लीकेशन आया, बैंक के पास गया, तो इसमें 3 से 5 दिन में सैंक्शन हो जाता है
0: जी।
1: और इसके लिए मुख्यतः उनको जागरूकता या उनको इसकी समझदारी बढ़ाने के लिए कि वो किस प्रकार से डिजिटल में या पोर्टल में, उसके लिए हम लोग अपने बैंक कर्मियों, जैसे बैंक में जो स्टाफ है, ऑफिसर है और या BC कॉरेस्पोंडेंट है
0: जी,
1: उन सब की सहायता लेकर के और हैंड होल्डिंग करके अर्बन लोकल बॉडी के साथ मिलकर आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, कैंप्स करते हैं, और वहाँ जो लाभार्थी है उनको बुला करके 1 by 1 पोर्टल से अवगत कराया जाता है। डिजिटल लेंडिंग अगर उपलब्ध है उस बैंक में तो उसको डिजिटली कैसे करना है, क्योंकि शैलेश सर ने बताया कि OTP आती है और आने के बाद वेरीफाई होता है और लोन सैंक्शन और डिसबर्स हो जाता है अकाउंट में। चूंकि इसकी राशि बहुत बड़ी नहीं है और चूंकि इसमें CGTMSE की गारंटी उपलब्ध है, तो मैं निर्भीक होकर जो अपना काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बैंक भी इसमें बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दे रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। और हैंड होल्डिंग BC कॉरेस्पोंडेंट, बैंक कर्मी और ULB के लोग, सब लोग मिलकर कर रहे हैं, तभी ये इस मुकाम पे पहुंचा है ये
0: जी। राजेश जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमने ये तो बात की कि अगर लोन समय से चुकता नहीं हो पाता तो बाजार में साख जो है वो खराब होती है, लेकिन अगर समय से लोन जो है वो चुकाया जा रहा है और अच्छा हमेशा व्यवहार रहा है, तो क्या इसका लाभ मिलता है और किस बड़ी राशि की हम अभी बात कर रहे थे?
1: निश्चित रूप से PM स्वनिधि एक, मैं कहूंगा कि प्रथम चरण है
0: जी,
1: जिसमें हमने और भारत सरकार ने, बैंकों ने, अर्बन लोकल बॉडी ने मिल करके जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको जोड़ा है, उनका फाइनेंशियल वित्तीय समावेशन क्रेडिट लिंकेज करके किया, ये शुरुआत हुई और इसको जिन लोगों ने सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया वो हमारा, आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें कि 20 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है, और शुरुआत में ये 50,000, 5 लाख और 10 लाख, और 10 लाख का सफल होने पे वो फिर 20 लाख का लोन भी ले सकते हैं। और उसके लिए भी इतनी ही सरलता है कि आपका रजिस्ट्रेशन है, आधार कार्ड हो गया, और जैसे अगर बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं तो थोड़ी

0: सी हैंड होल्डिंग बैंक की चाहिए होती है उसमें कि उनका जो बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रारूप लेकर के और उसको पोर्टल पर ही, उसके लिए भी पोर्टल बना हुआ है, वहां से करके सैंक्शन हो जाता है और वो 50,000 का सैंक्शन सफलता करते हैं। नेक्स्ट में वो जैसे शिशु, किशोर एंड तरुण, तीन चरण है जिसमें 50,000 और 5,00,000 और 10,00,000। तरुण यदि आपने सफलतापूर्वक कर लिया भुगतान तो तरुण प्लस जो कि 20,00,000 का लोन होता है मुद्रा योजना के अंतर्गत भी, इसमें भी कोई गारंटी नहीं, कोई बंधक नहीं और आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है तो आप उसके लाभान्वित हो सकते हैं। ये है और उसके आगे तो अंत नहीं है। बैंक जिस तरह से आज सुदृढ़ स्थिति में है, अपने वित्तीय जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका रीढ़ बना हुआ है, तो निश्चित रूप से जब एक अलग तरीके का एक कैटेगरी तैयार हो रहा है पीएम स्वनिधि के माध्यम से, जो निश्चित रूप में एक बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने में सहायता प्रदान करेगा।
1: जी, ऐसे में ये बताएं कि जैसा आपने कहा कि किसी ने लोन लिया और समय पर चुका भी दिया, लेकिन या तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या वो ज्यादा जानकारी नहीं है उन्हें अन्य कामों की, लेकिन जैसा आपने कहा कि उनका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा है, साख उनकी अच्छी है, बैंक उन्हें ज्यादा लोन दे सकता है, तो क्या ऐसी भी कोई योजना है कि एक व्यक्ति अगर कोई बड़ा काम न कर पाए तो छोटे छोटे समूहों में मिलकर वो लोन ले और कोई बड़ा काम शुरुआत कर सके उसकी?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत पहले से जो ये कह लें कि अर्बन और रूरल दोनों जगह में लाइवलीहुड मिशन के तहत जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी बहुत जोर शोर से काम चल रहा है भारत में, और इसमें मुख्यतः भारत की नॉर्थ ईस्ट, बिहार, यूपी, राजस्थान और अपना जो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह का निर्माण करके जो लोग समूह बना करके लोन ले सकते हैं, और ये शुरुआत में 6 महीने की डेवलपमेंट उनकी ग्रूमिंग होती है कि उनको बैंकिंग प्रणाली की और बैंकिंग लेन देन की समझदारी दी जाती है उनको। उसके लिए लाइवलीहुड मिशन है जो काम करता है बैंकों के हेल्प से, और इसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ा समूह उभर के आ चुका है ऊपर, जो लगभग करोड़ करोड़ के लोन उन लोग को मिल रहा है जब वो लेवल वाइज उठते जाते हैं उससे। तो निश्चित रूप से SHG ग्रुप है और JLG भी है, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, जिसमें नाबार्ड के हेल्प से हम लोग काम करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जब समूह बनाएंगे तो बैंक में और सरकार ने योजना दी हुई है जिनके मदद से वो एंटरप्रेन्योरशिप को और ऊपर ले जा सकते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं।
1: जी, व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और उसके लिए सुविधाएं हैं। जी, ये बताएं कि आप कौन सा गाना सुनवाना चाह रहे हैं हमारे श्रोताओं को?
0: मैं चूंकि पीएम स्वनिधि के कार्यक्रम में आया हूं,
1: जी,
0: और तो मैं चाहूंगा कि न सर झुका के जियो न मुंह छुपा के जियो।
1: वाह, बहुत अच्छा गाना आपने ये चुना है सुनील दत्त साहब का, आपकी पसंद का यही गाना हम सुनवा रहे हैं।
2: नाम

0: तो श्रोताओ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। योजना की लाभार्थी हमारे साथ हैं बबीता शर्मा जी, और साथ ही हमारे विशेषज्ञ हैं बैंकिंग सेक्टर से, जो बता रहे हैं कि किस प्रकार की योजनाएं और सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं और छोटी छोटी सी प्रक्रियाएं हैं, उनका पालन करते हुए, कुछ नियमों का पालन करते हुए लोग अपना काम करते हुए अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, लेकिन जिस पैसे से पैसा कमाया जाता है वो शुरुआती धनराशि जो है वो जुटाना बहुत मुश्किल होता है, और कभी बहुत मिन्नतें करनी पड़ती थी, किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था, और कभी अपनी कोई पसंदीदा चीज छोड़नी पड़ती थी, गिरवी रखनी पड़ती थी, तब धनराशि मिलती थी, तब जाकर लोग अपना काम शुरू करते थे। लेकिन ये सारी जो दुविधाएं हैं इन्हें दूर कर चुकी है पीएम स्वनिधि योजना, क्योंकि अब शुरुआती धनराशि जो है भले ही वो थोड़ी छोटी है, लेकिन अपने काम की शुरुआत करने के लिए बहुत जरूरी धनराशि बैंक से मिल जाती है, और धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाते हुए अपनी मेहनत के बल पर बैंकों से और धनराशि प्राप्त की जा सकती है, अपने समूह को बड़ा किया जा सकता है, और इस तरह से अपने सपने को भी छोटे से बड़ा किया जा सकता है, और फिर उसी सपने से जुड़ता है पूरा परिवार, जैसे बबीता जी का परिवार जुड़ा हुआ है। बबीता जी, ये बताएं कि अभी परिवार में कौन कौन सदस्य हैं और आपके काम से सीधे कौन जुड़े हैं?
1: मैं सबसे अपने श्वेता से हाथ जोड़कर सबसे कहना चाहती हूँ, मेरे परिवार में 3 बेटे हैं मेरे जी। और एक मैं, 4 हम प्राणी हैं
0: जी।
1: मेरा परिवार जिस तरीके से चलता है, शायद मैंने कभी उम्मीद नहीं की होगी पीएम सुनिधि योजना से जुड़कर। पीएम माने साथ साथ पीएम जी मेरे साथ चलते हैं, उस सुनिधि का मतलब है हो गया मेरा सुनहरा पल
0: जी।
1: सुनहरा सफर मेरा चालू हुआ जब मुझे इस योजना से जुड़ने का अवसर मिला, तो आज मैं इस मकाम पर हूँ कि इससे अपने बच्चों की फीस भी भर पाई हूँ, और अच्छे कुछ लोग हैं जो मैं गरीब बेटियों की शादी में भी कन्यादान मुक्त दे देती हूँ। और एक एनजीओ है मेरी, ये बात सुनो, तो उसमें कभी कभी 31 बेटियों की शादी भी होती है, तो उसमें मैं अपने पूजा का सामान सारा ऐसी बेचती हूँ उनके कन्यादान के लिए
0: जी।
1: मुझे इतनी खुशी है आज, शायद उसका फल मुझे आज मिला जब मैं यहाँ इस मकाम पर पहुंची। यार मोदी जी का मुझे थोड़ा, उन्होंने मेरा जिक्र जैसे किया है, तो मैं चाहती हूँ जैसे आज मेरा जिक्र किया, सभी महिला है या पुरुष है इसी योजना का लाभ उठाकर वो भी बन सकते हैं आज
0: जी
1: मोदी जी के जगह।

0: हजार के करीब आज मैं इतनी खुश हूँ कि नहीं बता सकती हूँ कि मैं आज कितनी मुझे खुशी हो रही है सब लोगों से मिलकर कि इस मंच पर मैं आज पहुंची। तो कहीं ना कहीं पीएम जी की शुभकामनाएं मेरे साथ या उनका साथ मेरे लिए बना रहा। लाभ भारती का मतलब होता है कि लाभ, किस तरह का लाभ। एक मैं लाभ भारती किस लिए भी कि इस योजना का लाभ मुझे मिला, तो आज मैं लाभ भारती का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मैं आज अपने परिवार को अच्छे से पाल पाई और उनको अपने पैरों पर खड़ा कर पाई और अपनी इज्जत से मान सम्मान अपने माँ बापों का नाम रोशन कर पाई, तो इसलिए सब लोगों का आभार प्रकट करती हूँ।
1: जी, तो आपके बेटे जो हैं वो आपके काम में हाथ बटाते हैं?
0: जी, मेरे जब ये कोरोना काल था तो हम तीनों माँ बेटा बड़े दुबक दुबक कर पर्ची लेकर अंदर से सामान दिया करते थे। बेटे मेरे सुबह स्कूल जब जाते थे तो दुकान खोल करके जाते थे, तो मैं इतना उनका लंच बना देती थी, तो जब वो स्कूल जाते थे तो मैं दुकान पर बैठ जाती थी, तो जब वो दोपहर को आना एक घंटे बाद उनको आराम करके तो शाम के टाइम उनको बैठा कर फिर खाना बनाने जाती थी। तो मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चली और मेरे बच्चों ने मुझे
1: बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं
0: जी, मुझे मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया
1: जी।
0: हर बच्चे ऐसे हों जो एक माँ को सपोर्ट करें एक हस्बैंड के जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं मैं सभी बच्चों को ऐसी एक वो देती हूँ। मेरे बच्चों में आज किसी चीज का ऐब या कोई ये नहीं है कि बहुत से बच्चों को देखती हूँ मैं कि माँ जॉब करने जाती है, तो मैंने इस तरीके को रख के देखा कि अगर आज मैं जॉब करने जाऊंगी तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, तो मैंने ये कार्य अपनाया। क्योंकि मेरे छोटे बच्चे थे तो उनको बड़ा शौक था, तो दो दो रुपए की कभी टॉफी लेकर आते थे तो दरवाजे पर रखकर एक स्टूल बैठ जाते थे, तो जैसे हमारी गली है तो उसी में ही सब बच्चों को बुलाकर इतने में उस चीज को बेच देते थे
1: जी। तो मुझे छोटी उम्र से ही आपने स्वावलंबन सिखाया उन्हें।
0: मुझे ये कहीं ना कहीं लगा कि स्वाभिमानी से भी जीना है और मेरे बच्चे साथ मेरे रहेंगे तो मैं उनको पाल भी पाऊंगी और उनको अच्छे से परवरिश भी दे पाऊंगी, तो इसलिए मैंने जॉब को ना कर कर ये
1: अपना काम अपनाया किया।
0: तो इसमें मुझे अच्छा एक रिस्पांस मिला अपने बच्चों से भी, तो सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे आज मेरे बच्चे आज मेरे साथ में सपोर्ट कर बन के खड़े हैं और आज मैं यहाँ हूँ, कुछ ना कुछ उसमें आज मेरे बच्चों का भी सपोर्ट है, तो सबके बच्चे ऐसे बने और अपनी माँ का नाम रोशन करें और मेरी तरह एक महिला बनके अपने आप में सम्मान को बचा सकती है और पैरों पे खड़ा हो सकती है
1: जी। बहुत सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से बबीता जी मैं आपको देती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये सुनना, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि महिला अपने स्वाभिमान के साथ ये काम कर सकती है, और दूसरा आपने अपनी जो कहानी हमें बताई है उससे हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता प्रेरित जरूर हुए होंगे जो जीवन में इस समय कहीं किसी कठिन दौर का सामना कर रहे हैं, किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। तो अपने आसपास के लोगों से मदद मांगिए, उनसे जिक्र कीजिए, क्योंकि हमारे लिए ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं सरकार की ओर से दी गई होती है जिनकी कई बार हमें जानकारी नहीं होती, और जानकारी के अभाव में जो हमारा संघर्ष का समय है वो थोड़ा सा और जटिल लगने लगता है। लेकिन जब मदद का हाथ मिलता है तब हमारी परेशानियां दूर होने लगती हैं, और बबीता जी इसका साक्षात उदाहरण हमारे सामने इस समय हमारे स्टूडियो में बैठी है। बबीता जी, आपसे मैं और बातें करूंगी और आपसे बहुत कुछ जानना है। शैलेश जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है इसने जो अनौपचारिक क्षेत्र है हमारा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जैसे रेडी पटरी वाले और अन्य खोमचे वाले हैं, खोखे वाले हैं, इनको मुख्य धारा की बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का किस तरह का स्वाभिमान दिया है, किस तरह का आत्मविश्वास इस योजना ने दिया है?
2: यह योजना एक तरीके से कहें तो बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया है
1: जी।
2: क्योंकि ऐसे जो वो मनी लेंडर या जो बाजार में जो लोग उधार देते हैं, अब वह काफी महंगा होता है और उनके वसूली की प्रक्रिया भी काफी कठिन होती है
1: जी।
2: और ऐसे में ये बिल्कुल ही सरल है, और इससे ना ही उसमें उनमें केवल आत्मनिर्भरता आई है, स्वावलंबन आया है, इसको हम लोग स्वनिधि से समृद्धि की ओर का भी एक हम लोग देख सकते हैं कि रास्ता तैयार हो रहा है। और जैसा कि राजेश जी ने कहा कि आगे अगर वो मुद्रा योजना का भी लाभ लेते हैं
1: जी,
2: तो हम केवल यहाँ पे स्वरोजगार की बात नहीं है, यहाँ पे आप रोजगार का सृजन भी करते हैं और समाज के दूसरे लोगों को भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं
1: जी।
2: तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि इस छोटे से स्वनिधि से आप प्राप्त कर सकते हैं, और यह बैंकरों को भी काफी संतोष और खुशी प्रदान करता है कि मात्र 15,000 रुपये के ऋण से शुरुआत करके वो हजारों लाखों लोगों के जीवन

0: में परिवर्तन ला सकते हैं। तो यह सबके लिए, जिसको कहते हैं विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, ये सभी के लिए काफी अच्छा है, देश के लिए, समाज के लिए, बैंक्स के लिए, सबके लिए अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुख्य धारा में जुड़ें और देश की आर्थिक विकास में सहयोग करें।
1: जी राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, ऐसा कहा जाता है कि कई बार जो आर्थिक परेशानियां होती हैं वो व्यक्ति को किसी ना किसी अपराध की तरफ भी धकेल देती हैं, तो आपका क्या विचार है इस बारे में कि जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ते हैं, एक डेटा तैयार होता है, तो क्या इससे अपराधों में भी कमी आई है?
2: निश्चित रूप से, जब रोजगार के अवसर नहीं होते हैं तो भटकाव एक बहुत सारे ऐसे तत्व हैं हमारे समाज में जहां पर कि लोगों को ध्यान आकर्षित करते हैं और कुछ बह जाते हैं उसमें। निश्चित रूप से पीएम स्वनिधि योजना, इसमें 18 वर्ष से ऊपर जो ऋण के लिए पात्रता होती है उन सबको एक अवसर दे रही है कि वो किस तरह से अपना रोजगार, स्वरोजगार आरंभ कर सकते हैं और उसके लिए कि स्वनिधि से समृद्धि की तरफ, तो बहुत ही अच्छा एक अवसर है कि वो सारे युवा, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, या जो भी इसमें योग्यता पात्रता के हिसाब से हैं, इसका लाभ उठा करके निश्चित रूप से इस अपराध के जो अवसर थे उसमें कमी आई है और लोग रोजगार की तरफ बढ़े हैं, अपने जीवन के स्वावलंबन की तरफ बढ़े हैं।
1: जी बबीता जी, आपसे जानना चाहूंगी, जब सबसे पहले आपको लोन की पहली किस्त मिली तो क्या बदलाव आया, उसका आपने क्या किया?
3: मैंने उसका, उस टाइम पे मेरा काम बंद था तो उसमें अपना सामान उठाकर अपनी दुकान में लगाया और व्यापार मैंने अपना चालू किया।
1: जी
3: तो ये अभी सर ने बोला कि 5,000, 15,000 का मतलब नहीं है, अगर मुझे लगन और मेहनत, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, मेहनत करना मेरे पापा ने सिखाया और हिम्मत और साथ मेरे पीएम जी ने मुझे दिया, तो मुझे दोनों को मिलकर मेरी हिम्मत बनी। तो मतलब 5,000 से नहीं होता, मतलब होता कोशिश करने से। 10,000 से मैंने कोशिश की तो मैं यहाँ तक पहुँची।
1: जी
3: तो 10,000 का अगर किसी इंसान को अगर लगन हिम्मत होगी तो 10,000 पे से अपना व्यापार चला सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें 1-2 लाख रुपए चाहिए, 5,000 से भी बिजनेस चालू कर सकते हैं, लेकिन एक जुनून होना चाहिए।
1: जी और आपको जो ऋण आपने चुकाया बैंक को, वापस दिए पैसे, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई?
3: नहीं, मेरा पेटीएम से लेन देन होता है तो जब मेरा कारोबार बढ़ा तो उसमें किस्त अपने आप ही उससे ही कट जाती है।
1: जी और अब आप क्या सोच रही हैं आगे?
3: अगर पीएम सुनीति जी का मुझे साथ मिला और ऐसे सर मेरे सामने बैठे, इनका हाथ जोड़कर वो करती हूँ धन्यवाद, जो ऐसे लोग हम लोगों के लिए सेवा में लगे हैं।
1: जी
3: मौका मिला तो कुछ अच्छा कर पाऊँ और आप लोगों के बीच दोबारा आ पाऊँ, यही निवेदन करती हूँ।
1: तो बबीता जी, आपका ये हौसला बना रहे हम यही चाहेंगे। ये बताइए कि आप अपनी पसंद का एक और गाना हमारे श्रोताओं को कौन सा सुनवाना चाहेंगी?
3: जिंदगी प्यार का गीत है
1: जी,
3: इसको सुनना पसंद करूंगी।
1: जी बिल्कुल, यही गाना हम आपको सुनवा रहे हैं सौतन फिल्म से।

0: तो श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। और हमें बबीता जी ने, जो कि पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं, आपने अपने गाने के माध्यम से हमें संदेश दिया, जिंदगी प्यार का गीत है। तो गीत जो है वो तब बनता है जब हमें लोगों का साथ मिलता है, और पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है वो लोगों का साथ दे रही है हर मुश्किल के घड़ी में, ताकि हमारे जो रेड़ी पटरी पर काम करने वाले भाई बहन हैं और जो इस समय संघर्ष की स्थिति का सामना कर रहे हैं या फिर खोमचे वाले हैं, खोखे वाले हैं, वो बैंक से लोन ले सके और अपने काम को आगे बढ़ा सके, और फिर बबीता जी की तरह समय से वो लोन चुकाकर बड़े लोन का सपना देख सके, बड़े काम का सपना देख सके। तो मैं शैलेश जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, हम अक्सर ये मानते हैं कि जो बैंकों का मुख्य कार्य है वो ये है कि हम जो कमाई करते हैं उसमें से जो हिस्सा बैंक को हम देते हैं, यानी हमारी सेविंग्स, उसकी सुरक्षा करना। लेकिन हम आजकल ये देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो बैंकों के माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों को मिल रही हैं। मैं आपसे कुछ ऐसी मुख्य सुविधाओं के बारे में जानना चाहूंगी जिनसे लोगों को लाभ जरूर उठाना चाहिए। क्या इस तरह की मेन स्कीम्स हैं जिनके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे?
1: नीलम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बैंकों का मुख्य काम है कि आपने जो अपने जीवन में बहुत मेहनत करके जो गाढ़ी कमाई की है
0: जी,
1: उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो उसमें बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इसमें एक लॉकर की भी सुविधा आती है
0: जी,
1: कि जैसे आप बहुमूल्य जो आपके गहने हैं या जेवरात हैं या जो बहुत महत्वपूर्ण कागजात हैं, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, तो उसके कागजात हैं, और अब तो बहुत लोग अपनी वसीयत भी तैयार करते हैं, सो जो है ये सब को भी अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, केवल अपने गाढ़ी कमाई को नहीं बल्कि जो जेवरात या जो बहुमूल्य सामान है आपके जीवन के, उनको भी सुरक्षित करने के लिए लॉकर की सुविधा है
0: जी।
1: और फिर बहुत सारे निवेश करने में आपको सहायता या परामर्श देने का भी काम बैंक करती है। और जैसे आप अपने बच्चों के जीवन में आगे कब एजुकेशन में क्या खर्च आएगा, उनके मैरिज के समय, उनके विवाह के समय क्या खर्च आएगा, फिर उनके बाद आप को कोई घर खरीदना हो या आपको गाड़ी खरीदनी हो, तो किस समय क्या जरूरत आएगी, उसके हिसाब से आप अपनी योजना बना सकते हैं
0: जी।
1: इसमें भी बैंक जो है आपको मदद करती है, एक परामर्शी सेवा भी प्रदान करती है, जिसको हम लोग वेल्थ सर्विसेज भी कहते हैं
0: जी।
1: और वह भी बैंक कर रही है अपने चुने हुए ग्राहकों के लिए। और जो व्यवसायी वर्ग है, जिस तरीके का वो व्यवसाय करना चाहते हैं, उन सबके लिए ऋण की सुविधा है। और जो स्टार्टअप्स लाना चाहते हैं, तो बेसिक स्टार्टअप तो स्वनिधि भी एक तरीके का स्टार्टअप ही है
0: जी,
1: और उससे थोड़ा ऊपर का मुद्रा से शुरू होता है। लेकिन हमने आईटी सेक्टर में बहुत प्रगति की है हाल के दिनों में, और बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई हैं जो केवल आईटी सर्विसेज शुरुआत दे रही हैं, सेवा प्रदान कर रही हैं, खासकर आईआईटी आईएम से पढ़े हुए युवा। सो वो अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके इकोसिस्टम को भी बैंक मदद कर रही है
0: जी।
1: जितने आप ट्रेडर्स और मर्चेंट्स, रियल एस्टेट बिल्डर्स देखते हैं, सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं कि उनकी जो भी जरूरतें हैं, वित्तीय जरूरतें
0: जी,
1: सब कुछ ये बैंकिंग सेक्टर में क्षमता है आज के दिन में कि सबकी जरूरतों को हम पूरा कर सकते हैं
0: जी।
2: नीलम जी, चूंकि पीएम स्वनिधि की बात हो रही है
0: जी,
2: तो शैलेश जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि ये तो वित्तीय सेवाएं बैंक देती ही है या निवेश के लिए परामर्शी सेवाएं, इसके अलावे जो CSR के तहत
0: जी,
2: आप देखेंगे कि गांव में, आप शैलेश जी इस बात से सहमत होंगे कि RCT रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हर एक जिला एक बैंक के साथ जुड़ा है एज ए लीड डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम से
0: जी,
2: तो वो उसको चलाना है RCT का इंस्टीट्यूट, जिसमें कि वहाँ के युवाओं को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके स्किल डेवलपमेंट में सहयोग प्रदान करती है
0: जी।
2: तो RCT की भूमिका है। उसी प्रकार से जो एक फार्मर्स ट्रेनिंग क्लब है, जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि सेवाएं या कृषि कैसे किया जाए उसके बारे में जानकारी
0: जी,
2: बीज, मिट्टी का जो उपयोगिता कैसे बढ़ाई जाए उसके विषय में उनको जानकारी दी जाती है, पेड़ पौधे किस तरह से किस मौसम में लगाई जाए, इन सब की भी सुविधाएं बैंक देती है।
0: जी, यानी समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, जो अलग अलग कामों से जुड़े हैं, सभी के लिए बैंकिंग सेक्टर में कुछ ना कुछ है। बस जाकर सही बात अपने लिए क्या सुविधा है उसका चयन करने की और प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। चलते चलते आपसे एक और सवाल, कई बार लोगों को शिकायत होती है बैंकों से भी, सुविधाएं तो बहुत मिल रही है, अगर ऐसा लगता है कि बैंक समय से हमारी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे या कोई ऐसी प्रक्रिया है जो समझ में नहीं आ रही है, बहुत जटिल है या बार बार जाना पड़ रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो बैंकों के बारे में शिकायत कहां की जाए?
2: बहुत ही सही प्रश्न है ये। आज के समय में ग्राहक सेवा प्रथम स्थान पे है सभी बैंकों के लिए और उसमें अगर किसी को इस तरह की परेशानी होती है, हर एक बैंक का वेबसाइट है या पत्र के माध्यम से उसके प्रधान कार्यालय को या स्थानीय कार्यालय, जैसे स्टेट बैंक का LHO होता है, हमारा अंचल कार्यालय या मंडल कार्यालय होता है, अन्य बैंकों की इस तरह की सुविधा है, वहाँ पत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। एक CRM कस्टमर रिडर्सल पोर्टल भी है, वहाँ पे वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ओम्बड्समैन की प्रक्रिया है जिसमें RBI के माध्यम से आप अपनी शिकायतों को उठाते हैं और उसका क्रमशः नीतिगत रूप से निदान होता है, निपटान होता है। और ये सब चीजें आजकल बैंकों के लिए, हम लोग फीडबैक मांगते हैं कि हमारे जो शाखाएं हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं या जो अन्य वर्टिकल्स हैं वो कहीं भी समस्या है तो उसको ग्राहक से सुनकर एक फीडबैक के रूप में उसको लिया जाता है और ये सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से ये सारे शिकायतों का निपटान हो सकता है।
0: जी, यानी अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी हमें बैंक से ही मिल जाएगा। तो राजेश कुमार जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ, महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक से हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे। श्री शैलेश कुमार, आप महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज रही श्रीमती बबीता शर्मा, आप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की ऐसी लाभार्थी जो हमारे हर तीज त्योहार में हमारे साथ होती हैं, बस हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि हम जो पूजा का सामान लाते हैं और अपने पर्व त्योहारों पर अपने घर को जो हम सजाते हैं, अपने

0: अनुष्ठानों में अपनी आस्था को रंग भरते जो सामान हम इस्तेमाल करते हैं उस सामान को बबीता जी बेचती हैं अपनी दुकान पर, जो दुकान इन्होंने बढ़ाई है, सजाई है, जिसे पहले से बेहतर किया है आपने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से। और इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है ये हमारे दोनों विशेषज्ञों ने हमें बताया है बबीता जी की कहानी से। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोता प्रेरित होंगे और फिर जीवन में आगे बढ़े। आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से मैं अपने सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही अपने विशेषज्ञों का भी यहां पर आभार व्यक्त करती हूं। तो राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमें समय दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी और सभी श्रोताओं को कि हम लोगों को आकाशवाणी दिल्ली को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, आप हमारे स्टूडियो आए।
2: धन्यवाद नीलम जी और बबीता जी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में अपने अनुभव को साझा किया है, हमको लगता है कि वह एक मील का पत्थर साबित होगी जो इसका लाभ लेना चाहते हैं।
3: धन्यवाद
2: राजेश,
0: धन्यवाद बबीता जी आपका। तो अपने सभी श्रोताओं को एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये वक्त है समाचारों का। मैं हूँ नमिता आपके साथ। ब्रिक्स नेताओं में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में ईरान के आर्थिक मामलों और वित्त मंत्री सैयद अली मदनीजादेह से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों और आपसी हितों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेल्टन का सामना आज रात जर्मनी के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे शुरू होगा। अलेना रायबाकनी ने अरीना सवालेंका को फाइनल में 3 सेट में हराकर महिला एकल का खिताब अपने नाम कर दिया। चेंबूर इलाके में आज सुबह BEST की एक इलेक्ट्रिक बस के बैटरी बॉक्स में आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। और समाचारों के अंत में, मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारी जोरों पर है। गणेशोत्सव के दौरान मुंबई मेट्रो नेटवर्क पर रात के 12:30 बजे तक सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसी के साथ समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम म्यूजिक कैफे की ओर।

गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है गणेश जी के द्वार, कुछ ना कुछ उसको ज़रूर मिलता है। इन्हीं लाइंस के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस सेगमेंट की म्यूज़िक कैफ़े के। मैं हूँ आरजे नमिता आपके साथ। हाय हेलो सत श्री अकाल वणक्कम आप सभी को, गुड मॉर्निंग है जी। और आगे बढ़ने से पहले ये बता दूँ कि आजकल जो ट्रेंड है ना वो चल रहा है, कुछ 80s की फ़ोटोग्राफ्स जो है सोशल मीडिया पर आपको दिखाई देगी। चैट जीपीटी, ये सोशल मीडिया के थ्रू चैट जीपीटी से हम इतना काम करवा रहे हैं, इतनी सारे फ़ोटोग्राफ्स हमारे चेंज करके दे रहे हैं वो 80s की। सो हमने सोचा क्यों ना वो नगमे भी लेके आए जो 80s 90s में आपको बहुत पसंद आए थे, बहुत चर्चित थे, वो पॉप सॉन्ग्स जो अभी भी जहन में बैठे हैं और हंसने गाने के लिए मजबूर कर देते हैं, नाचने के लिए मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल आज एक घंटा आप इन्हीं पॉप्स का मज़ा लेने वाले हैं। और सड़कों पे मची हुई धूम फेस्टिवल की जो दिख रही है, आपको भी यकीनन दिख रही होगी, इतनी खूबसूरत लाइट्स, इतने खूबसूरत डेकोरेशंस। ये कहते हैं ना फेस्टिवल जब आता है तो अपने साथ खुशियां ही लाता नहीं है बल्कि बहुत सारे रंग लेके आता है, और वही रंग जो है ना वो बिखरे हुए हैं बिल्कुल ज़मीन पर शॉप्स में। और निकल पड़िए अपने घर से बाहर, देखाइए। और थोड़े दिनों में तो मतलब कल की ही बात है, झांकियाँ भी सज चुकी हैं और दर्शन की लंबी कतारें भी लगने वाली हैं। तो अपने आप को भी सेफ रखें इस उत्सव का अच्छे से आनंद उठाने के लिए, सारे जो हैं सिक्योरिटी फीचर्स का भी ध्यान रखें, ना खुद किसी को परेशान करें, ना ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे ज़्यादा क्राउड है और आप परेशानी में आ सकें। तो कोशिश कीजिए कि पहले दिन से लेके अभी 10 दिन का सफ़र है, बिल्कुल इंजॉय करते हुए इस समय को गुजारें और हमारे साथ बने रहिए। हम ये त्यौहारों की ही बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे खास त्यौहार जो अलग हट के मनाए जाते हैं पूरे देश में, बताते हैं इस गाने के उस पार।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जी हाँ, म्यूजिकली योर्स FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, मैं हूँ आरजे नमिता आपके साथ और म्यूजिक कैफे का सफर जारी है। हम बात करने वाले हैं तीज त्यौहार की, जी हाँ, जो एक साथ पड़ने वाला है कल। सो बहुत सारे लोग जो अपने घरों में गणपति बैठाते हैं, इस तैयारी में भी हैं। बहुत से लोग हैं जो तीज का त्यौहार भी मनाते हैं और वो भी इस तैयारी में लगे हुए हैं। जब दोनों चीज़ें साथ साथ हैं तब तो मज़ा जो है वो भी दुगना आने वाला है। फिलहाल बात करते हैं उन त्यौहारों की जो कुछ अजीब तरीके से मनाए जाते हैं पूरे देश में। एक जिसका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, ये है गोटमार मेला। मध्य प्रदेश का फेमस सा मेला है। इसकी शुरुआत जो है हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा क्षेत्र में हुई थी और ये गोटमार मेला जो होता है देखने में अनोखा है और बेहद जोखिम भरा भी है। परंपरा है कि नदी के बीच में एक पेड़ लगाया जाता है और उसके दोनों ओर खड़े समूह जो होते हैं एक दूसरे की तरफ पत्थर फेंकते हैं। अब सवाल यह है कि त्यौहार में फूल बरसाने की जगह पत्थर क्यों बरसाए जाते हैं। फिलहाल अपने अपने रिवाज अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, खाने अलग हो सकते हैं, त्यौहार मनाने का तरीका भी अलग हो सकता है। कुछ ऐसे ही विचित्र लोक कथाओं पर आधारित जो है त्यौहार भी होते हैं। जैसा आपने सुना भी होगा, गोटमार मेला होता है पांडुना में, ये मेला होता है मध्य प्रदेश के। इसके अलावा भगोरिया जो मध्य प्रदेश का ही एक बेहद अलग तरीके का त्यौहार माना जा सकता है, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, ऐसे जो आदिवासी क्षेत्र हैं यहाँ का पर्व है। होली के पहले ये पर्व मनाया जाता है। रंग होते हैं, नृत्य होता है, संगीत होता है, हाट बाजार होता है, इसकी खासियत है।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, मैं हूँ आरजे नमिता और प्रोग्राम का नाम है म्यूज़िक कैफ़े। ये जो आप रेट्रो सॉन्ग सुन रहे हैं, पॉप सुन रहे हैं, ये गाने ज़बानी लोगों को याद हुआ करते थे और अब तो इसके रीमेक्स भी बनने लगे हैं और बहुत बखूबी रीमेक्स बनाए गए हैं ज़बान पे। यंगर्स के भी अब यही गाने हैं जो 80s 90s के लोगों के ज़बान पे रहा करते थे। फिलहाल ऐसे त्योहारों की बात हो रही है जो लीक से हटकर है, ये गाने भी लीक से हटकर थे और ये त्यौहार भी। लठमार होली जो बरसाने की है, नंदगांव उत्तर प्रदेश में ये खेली जाती है। इसके बारे में आप सभी जानते हैं क्योंकि सालों से ये त्यौहार बड़ा फेमस है। यहाँ होली खेलने का अंदाज़ अलग होता है। यहाँ की महिलाएँ प्रतीकात्मक रूप से लाठियों से पुरुषों को मारती हैं और पुरुष बचने की कोशिश करते हैं। इसकी परम्परा कृष्ण राधा की लोक कथा से जुड़ी जाती है। फिलहाल आगे बढ़ते, एक ऐसा पंजाब का गेम है जिसको आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये कौन सा गेम होता है, इसका नाम भी ओलंपिक्स है। जी हाँ, किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक्स। ये जो होता है, ये खेल, यहाँ जो खेल होते हैं वो सिर्फ कबड्डी या दौड़ नहीं होती है, बैलगाड़ी की दौड़ होती है, घुड़सवारी होती है, कई हैरत अंगेज ताकत के प्रदर्शन भी यहाँ देखने को मिलते हैं। पारंपरिक रूप से दांतों से जो भारी चीज़ें खींचने वाली रेसेस होती हैं वो सब यहाँ पर होती हैं और बालों से वाहन को खींचने जैसे कर्तव्य भी यहाँ जो है चर्चा का हिस्सा रहते हैं। और कर्नाटक का एक फेस्टिवल है जिसकी बात नहीं की तो कुछ नहीं की, अग्नि केली। नाम से ही समझ में आता है कि कुछ अग्नि से रिलेटेड है। मैंगलोर क्षेत्र में ये मनाए जाने वाली परंपरा है और हर प्रतिभागी जो है वो जलती हुई मशाल के साथ एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं और नाम से ही पता चलता है कि अग्नि के साथ कुछ खेल खिलवाड़ होता है। ऐसा ही अग्नि से जुड़ा हुआ एक खेल और है, थिमथी, जो तमिलनाडु में बनता है। ये अग्नि परीक्षा जैसी धार्मिक परंपरा जिसमें श्रद्धालु जलते हुए अंगारों पर चलने की रस्म निभाते हैं और इसे महाभारत की द्रौपदी से जोड़कर आस्था के संदर्भ में देखा जाता है। सो आपके भी गांव में कोई ऐसी अनोखी सी प्रथा होती है तो हमें लिख भेजिए 8657661071 पर और आनंद लीजिए डिंग डोंग का।

जी हाँ, वो जाने या ना जाने, मगर हम ज़रूर जानते हैं कि इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप से मनाए जाते हैं, और एफएम रेनबो पर इस वक्त हम यही चर्चा कर रहे हैं। एक और ख़ास तरीके का बस्तर में दशहरा मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ की बात है ये, सामान्य दशहरे से बिल्कुल अलग सा दशहरा होता है, और ये मालूम है 75 दिनों तक चलने वाली विशिष्ट आदिवासी परम्परा है। इसके एक चरण में तो रथ की चोरी होती है, प्रतीकात्मक रूप से ये रस्म मनाई जाती है, और रथ की चोरी ऐसा नहीं है कि सचमुच में हो जाती है, पर रथ को चुराया जाता है, और रैनी रथ चुराई के नाम से ये जो चोरी है वो होती है और इसे ढूंढा जाता है। बांधा मतौर, ये भी एक परंपरा है बस्तर छत्तीसगढ़ की ही। लगभग हर 3 साल में ग्रामीण समुदाय के लोग जो हैं तालाब में एक साथ उतरकर मछलियां पकड़ते हैं। वर्षों तक तालाब में मछलियों को सामूहिक रूप से पाला भी जाता है इस त्यौहार को मनाने के लिए, और फिर एक दिन तय करके पूरा समुदाय मिलकर उन्हें पकड़ता है। तो ऐसे डिफरेंट स्टाइल के उत्सव भी मनाए जाते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि गणेश उत्सव आ रहा है, और बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी जो है नींव रखी थी, इसकी शुरुआत की थी, भाईचारे को बढ़ाने के लिए एक साथ एक

होकर एक ही फीलिंग, एक पॉजिटिविटी की फीलिंग लाने के लिए. सो ऐसे ही त्यौहार, कई तरीके के त्यौहार जो हैं हमारे देश में मनाए जाते हैं, और अगर आपके गांव में भी मनाए जाते हैं, कोई ऐसा डिफरेंट सा फेस्टिवल, कोई ऐसी डिफरेंट सी बात है जो आपके जहन में आ रही है इस बातों को सुनकर, तो लिख भेजिए 8657-661071 पर.

इसी गीत के साथ विराम देंगे म्यूजिक कैफे को, आगे बढ़ेंगे आपके अपने प्रोग्राम हिट एंड हॉट की ओर। लेकिन पहले होंगे समाचार। भाई, भारत की अनेक भाषाओं की, अनेक धर्मों का देश है, ये हम सब जानते हैं। उनकी बातें की हमने, कहानियाँ सुनी उनकी परंपराओं की, जो डिफरेंटली साउंड करती हैं, लेकिन त्यौहार के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, भावना एक ही होती है कि हम साथ हैं, इसलिए तो हर दिन उत्सव है। और यही शायद सबसे खूबसूरत बात है कि विविधता हमारी पहचान है और परंपराएं हमारी संस्कृति। बने रहिए समाचारों के उस पार, मिलेंगे हिट एंड हॉट में।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: वेलकम, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है. हिट एंड हॉट प्रोग्राम शुरू हो चुका है और आप सभी की फरमाइशें पहले ही स्क्रीन पर मेरे सामने आ चुकी हैं. फिलहाल जिस गाने से हम एंट्री करने वाले हैं उसको सुन लेते हैं और उसके बाद आज की छोटी सी पजल होगी. फिलहाल आपकी जो भी पसंद है आप हमें लिखकर कहाँ भेज सकते हैं, 8657661071 पर. तो ये वक्त आपका है, ये गाना आपका है और बातें भी आप ही की होंगी. बने रहिए एफएम रेनबो के साथ.

सो हिट एंड नॉट का पहला ये गाना जो आपने सुना है आकांक्षा मनोज सिन्हा की पसंद पर सुना है, अहमदाबाद से इन्होंने हमें ये फरमाइश की थी। और आगे बढ़ते हैं यशवंत जी की पसंद का गाना, साथ ही शिव गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांशी, संगीता, लिपि, दीपाली गोप, इन सभी की पसंद के गाने बजने वाले हैं। मेरी पहेली पर जल्दी से आंसर जो देगा उसका भी पसंद का गाना ज़रूर बजेगा। तो छोटी सी तीन वर्ड्स आपको बताऊंगी और आपको जज करना है फिल्म का नाम। तो तीन वर्ड्स से अगर आप जल्दी से जल्दी जज कर सकेंगे तो आपकी पसंद का गाना भी हो सकता है इस लिस्ट में। फिलहाल दार्जिलिंग पहला शब्द है, आर्मी दूसरा शब्द है, तीसरा ब्रदर। तो आपको बताना है दार्जिलिंग, आर्मी और ब्रदर, इन तीनों ही शब्दों को सुनकर कौन सी मूवी का नाम आपके जहन पे आता है। लिख भेजिए 8657661071 पर। बने रहिए यहीं FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हिट एंड हॉट और आपका पसंदीदा प्रोग्राम इस वक्त आ रहा है एफएम रेनबो पर। मैं हूं आरजे नमिता और बातचीत हमारी हो रही थी, सवाल जवाब हो रहे थे और सही जवाब जो है वो भी आ गया है सवाल का। तो सवाल बहुत ही कॉमन सा था, आपको तीन वर्ड्स दिए थे, दार्जिलिंग, आर्मी और ब्रदर। इनको ध्यान में रखते हुए कौन सी मूवी का नाम आपके जहन में आता है? बहुत सारे जवाब आए हैं लेकिन सभी मोस्टली गलत हैं। दो लोगों ने सही जवाब दिया है और जल्दी जल्दी जवाब देने वालों में वीर जी पंजाब से और राकेश माथुर जी। लेकिन राकेश माथुर जी का भी जवाब थोड़ी देर से आया है, वीर जी इसमें विजय प्राप्त करते हैं तो बधाइयाँ। सही जवाब है मैं हूँ ना। जी हाँ, ये फिल्म जो है इसमें दार्जिलिंग का भी एक हिस्सा है जिस स्कूल की में

ये सब हो रहा था, यानी गैदरिंग हो रही थी और उसका ये गाना भी बड़ा फेमस है. सो वो गैदरिंग जो है दार्जिलिंग में हो रही थी. मूवी अगर आपने देखी है तो ज़रूर आप पहचान जाते. फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हीरामन जी की पसंद का गाना सुनेंगे. फिल्म तुम बिन का ये गाना है. हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा, इन सभी की पसंद का गाना.

जय साखरे जी इंदौर से हमारे साथ हैं, फिरोज जी हमारे साथ हैं ही, हरिमनी वर्मा भी हमारे साथ हैं, संदीप कुमार गोपे जी झारखंड से हमारे साथ हैं, डिकॉस्टो जॉन जी हमारे साथ हैं, प्रमोद जी हमारे साथ हैं, साथ ही हितेंद्र दास जी हमारे साथ हैं, भूषण खेड़ा जी हैं, दिग्दर्शन और कविता जी हैं, गणेश मगर मुंगी पैठण से, ज्योति जी हमारे साथ अकोला से, अशोक ठाकुर जी हैं अंजू अंधेरी से, बाबा जी दादर से, विजय जी, जयंत जी, प्रणव जी, विनोद जी और साथ ही है आदर्श जी हमारे साथ। तो बने रहिए यहीं FM रेनबो पर, आप सभी की फरमाइश के गाने जरूर बजेंगे FM रेनबो पर।

0: छोटे से अंतराल के बाद फिर बातचीत करेंगे। आपके नाम, आपके गाने सब तैयार है।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: जी हाँ, म्यूजिकली और संडे का दिन है और आप सभी त्योहारों की जो तैयारियां हैं उसमें लग गए होंगे। फिलहाल हमारा छोटा सा सवाल, तीन वर्ड्स आपको बताना है कौन सी मूवी बनती है इन तीन शब्दों को सुन के। कुनूर, फैमिली और बर्थडे पार्टी। जी हाँ, इन तीन शब्दों को सुनते ही आपके जहन में अगर कोई फिल्म का नाम आता है तो जल्दी से लिख भेजिए। शब्द एक बार फिर सुन लीजिए, कुनूर, फैमिली और बर्थडे पार्टी। कहाँ हुई थी ये बर्थडे पार्टी? कोई गाना है क्या जहन में आपके जो इस बर्थडे पार्टी में गाया गया है? फिलहाल आगे बढ़ते हैं और ये गाना सुनते हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह, गुरलाल और अविराज सिंह की पसंद पर गांव लोहगढ़ ठाकुरा गांव वाला से।

इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं वीर जी पंजाब से और अशोक जी भी इसकी फरमाइश करते हैं मुलुंड से. सो आप सभी की पसंद के गाने बजाने की कोशिश रहती है, पर कुछ हमारे दोस्त हैं जिनकी पसंद के गाने हम नहीं बजवा पाते हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं. एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, अगेन वीर जी पंजाब से इसका सही जवाब देते हैं. सवाल था कुनूर फैमिली बर्थडे पार्टी, इन तीनों को

कि कौन सी फिल्म आपको याद आती है, आपके जहन में आती है? तो इसका सही जवाब है कपूर एंड सन्स। सही जवाब देने वाले वीर जी की पसंद का गाना आप सुन ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं ये गाना। खंडवा से हमारे पसंद करने वाले साथी हैं विजय मोहबिया, कविता, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी सलोनी और पेंटर बाबू खंडवा से। ये सब हमें लिखते हैं, इनके साथ ही विशाल सिंह, विवेक सिंह जी खंडवा के शीतला चौक से हैं, और शिवपुरम का कॉलोनी से कमला देवी, अनय, अनाया, ईशु बाबा जी हाँ, आप सभी की पसंद पर आ रहा है ये नगमा।

चल रहा है धूप में तो विनायक तेरी छाया है, शरण तेरी सच्ची है, बाकी सब मोह माया है। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों के साथ इजाजत दीजिए मुझे यानी अपनी दोस्त अपनी होस्ट नमिता को, और बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। कुछ ही पलों में मिड डे न्यूज़ आप सुन सकेंगे जिन्हें हम रिले करेंगे। सुनते रहिए एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा।

0: प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज के परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। यह भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
0: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद है। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए जिसका आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में 2x से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
0: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
2: देखिए संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी
0: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
3: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
0: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
4: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
0: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
5: यह बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है। और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ, एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार

0: ऐसा अभिलेख परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
1: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गिर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेले ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।
2: नमस्कार, आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल और ये प्रोग्राम है लव यू जिंदगी। वक्त हुआ है 5:02:55। मेरा नाम है वसीम और मैं रहने वाला हूँ आप लोगों के साथ रात 8 बजे तक। और ऑफकोर्स ये प्रोग्राम चलता रहेगा लव यू जिंदगी, उसके बाद अंदाज़े बयां, फिर उसके बाद ऑफकोर्स हम तुम, जिसमें आप लोगों की रिक्वेस्ट और बीच बीच में जो भी अपडेट्स रहेंगे हम आपको देते रहेंगे, तो उसके लिए आप सभी लोग बने रहेगा। और अब हम शुरू करते हैं ये प्रोग्राम कुछ खूबसूरत गानों के साथ और आप बने रहिए मेरे साथ, लेकर आता हूँ कुछ और बातें। आप सभी लोग बने रहिए 107.1 FM रेनबो पर।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल.
2: एब्सोल्युटली रिलैक्स एंड चिल. 5:11 हो चुके हैं और आप सभी लोगों का स्वागत एक बार फिर से करता हूं मैं. मेरा नाम है वसीम और ये शाम का वक्त और रविवार, आप सब लोग है बिल्कुल त्यौहार के लिए तैयार और आगमन बस है. और मैं आते वक्त रास्तों पर देख रहा था कितनी खुशहाली, हर जगह पटाखे और वो म्यूज़िक, वो ढोल, उनकी आवाज़ें, इसके बारे में जिक्र ज़रूर करूंगा मैं आप लोगों के साथ. लेकिन कितनी पॉजिटिव वाइब्स है और कितनी खुशी जो आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. और साथ ही साथ जो इसका एक सिग्निफिकेंस है उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा. आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा. गानों का ये सिलसिला जारी रखते हुए, वो बातों को जारी रखते हुए हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम को आगे लेकर. लव यू ज़िंदगी क्यों नहीं, इतनी खुशी का माहौल है और लव यू ज़िंदगी हम ना कहें ऐसा हो ही नहीं सकता. स्टे ट्यून.

वेल, फिलोसफी का क्रेज है या नहीं है, लेकिन अंदर से कितना क्या कमाल का, मतलब तकरीबन 1 मिनट 21 सेकंड्स के आसपास का ये गाना है, लेकिन इसके जो बोल हैं कभी इस पर ज़रूर गौर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश शिंदे, ड्रीम गर्ल को 7 साल जो फिल्म आई थी, बहुत ही कमाल फिल्म और सुपर डुपर फिल्म, और उसका गाना मैं ज़रूर आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंतज़ार करें। प्रणव, थैंक यू। सुर को भी जो फिल्म आई थी कभी शाम ढले, वो गाना आपको याद होगा, 13 सितंबर 2002, मतलब 2002 को ये फिल्म आई, और कितनी रफ्तार से, मतलब कितनी तेज़ी से वक्त निकल गया। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वैदेही, पंकज मोहर, विजेंद्र गर्ग और राकेश माथुर, राजेंद्र परमार, फिरोज सिकंदपुरिया और हितेंद्र, दीपा पालकर, विश्वनाथ, आप सभी लोगों का और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस प्रोग्राम लव यू ज़िंदगी में बने रहने के लिए, और साथ ही साथ इस में अपने मैसेजेस को शेयर करने के लिए 8657661071 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारे साथ बने रहिए इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है लव यू ज़िंदगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों को इन गान के उस पार, बने रहिए मेरे साथ दिल से दिल तक। शाम का ये वक्त, चाय हो या कॉफी, चॉइस है आपकी, गाने हमारे स्टेडियो।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Life ki beats hoti nahi fix. Love you zindagi 5 to 6. Every evening with chai biscuits. Tune in Rainbow, relax and chill.
2: एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। 5:41 और 13:14 हो चुके हैं और बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश तुम्हारे कॉल के लिए, वैदेही बाबा, दीपा पालकर, अरविंद कुलकर्णी, पंकज मोहार, थैंक यू आप सभी लोग। गणेश आगमन उत्सव, गणेश भगवान आगमन उत्सव, कल से डेफिनेटली सब ये त्योहारों का सिलसिला जो जारी रहने वाला है और आप सभी लोग जो उसकी तैयारी में लग चुके हैं और कई सारे मंडप जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं सबको सब। और मैं जब बता रहा था ना, मैं जो आ रहा था रास्ते से, इतना खूबसूरत मंजर था और इतना खूबसूरत नज़ारा और इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्स थी। एक उम्मीद कहते हैं ना, कई सारी जो दुआएं जिसका इंतज़ार है कि आज प्रार्थना हमारी जितनी भी हम करेंगे, हम मांगेंगे, वो सारी की सारी कबूल होगी यानी पूरी होगी, क्योंकि वो खुद आ रहे हैं आपके पास आपसे पूछने आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। वैसे इसके बारे में भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम में सार्वजनिक गणेश उत्सव ने जो देशवासियों को एकजुट करने और उनमें देशभक्ति की भावना जगाने में एक ऐतिहासिक भूमिका जो निभाई थी, वो तो लाजमी है ही। वो एक सिलसिला जो चला आ रहा है, लेकिन सभी भक्तों के जो दिमाग में ये ढोल बज रहा है और है ना, कहीं ना कहीं ये डेकोरेशन जो पूरे हो चुके हैं, ये लाइटिंग्स, ये कलर्स, ये सब के सब आप देख सकते हैं। और ये कई सारे ऐसे गाने जो दिलो दिमाग में चल रहे होंगे कि ये गाना चलेगा ये, और ऑफकोर्स पैर भी थिरक रहे होंगे। गणेश चतुर्थी सिर्फ उस दिन से शुरू नहीं होता जिस दिन से आगमन है, बल्कि ये उसी पल से शुरू होती है जब आप शांत बैठ ही नहीं सकते, बड़े बेचैन रहते, इंतज़ार में रहते। तो आप सभी लोगों को, सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की ऑफकोर्स एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मैं आप लोगों को सुनवाता हूँ कुछ और गाने यहीं FM रेनबो पर 107.1 मेगाहर्ट्ज़। स्टे ट्यून्ड, दिल से दिल तक।

लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। 5:51 और 8-9 सेकंड्स हो चुके हैं और युगानों का फीडबैक मुझे मिल रहा है। थैंक यू सो मच प्रकाश, अवैदेही, अजय बाबा, दीपा पालकर, अरविंद, आप सब लोग बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने गिरगाम चौपाटी के बारे में हमें दीपा पालकर जी बताया। आप जाते हैं, मिलते हैं, ऑफकोर्स यही वो मौका है, यही वो मोमेंट है और बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने वो सारी बातें शेयर की आप लोगों के साथ। लेकिन ड्रीम गर्ल फिल्म से तो आपने वो गाना सुन लिया था और उसके बाद एक और जो फिल्म है जो 2002 में आई थी 13 सितंबर को, उसी फिल्म का एक गाना मैं आप लोगों को सुनाता हूँ और ये गानों का सिलसिला चलता रहेगा। फिर उसके बाद न्यूज़ अपडेट्स होंगे 6:05, उसके बाद मैं मिल रहा हूँ आप लोगों से सीधे 6:15 प्रोग्राम अंदाज़े बयां में। आप बने रहिएगा मेरे साथ इन खूबसूरत गानों के बीच। मैं यही हूँ, बस आप भी मेरे साथ बने रहें, दिल से दिल तक।

इस अंधेरे में सिर्फ 20 सेकंड्स के लिए आप सोचिए कि जब आपने अपना पहला सपना देखा था कि माँ मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा, तो आपने कभी ये नहीं सोचा होगा और माँ से ये नहीं कहा होगा कि मैं एक्टर बनूंगा माँ और गरीबों को तम्बाकू बेचूंगा। आप ऐसा कहते तो माँ आपको एक चांटा मार देती, या डॉक्टर बनूंगा माँ और मैं गरीबों को लूटूंगा।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: आदाब, गजल, कव्वाली, फोक और सूफी की महफिल सजेगी रेनबो के साथ प्रोग्राम अंदाज़े बयां में शाम 6 से 7 तो ट्यून इन करें 107.1 एफएम रेनबो जनाब।
4: बिल्कुल सही, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल जो है म्यूजिकली योर्स दिल से दिल तक। वक्त हुआ है 6:17:47 रविवार की शाम। हम आपके साथ, आप सभी लोग बने हुए हैं मेरे साथ इस प्रोग्राम अंदाज़े बयां में और चलिए गुफ्तगू करते हैं आप और हम। कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी में, कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी में, फिर भी फिजा को रंगीन बना देती है, फिर भी फिजा को रंगीन बना देती है। निदा फाजली साहब की लिखी हुई ये गज़ल जगजीत साहब ने इसे गाया है। इसके बाद जगजीत साहब ने जो गुलजार साहब ने लिखा वो गाया है। ये दोनों आप सुनिएगा जगजीत साहब को याद करते हुए और इस खूबसूरत राइटिंग को, इस ख्याल को, कहीं ना कहीं उसकी तारीफ़ में गुम हो जाते हुए। उसमें निदा फाजली साहब की जो गज़ल है उसमें बरसात को लेकर बहुत ही खूबसूरत सी बात है। ज़रूर गौर करिएगा, बने रहिए हमारे साथ अंदाज़े बयां में।

दोस्तों, आप सबको देखकर मेरा कलेजा दुगना हो गया है। हमारी भी अब यही कोशिश है कि इस शाम का आप पूरा पूरा मजा लेकर घर लौटें। आज की शाम की इब्तिदा हम कर रहे हैं एक गजल से। शायर हैं जनाब निदा फाजली, उसके बाद चंद नई गजलें पेश करेंगे, फिर जैसी जैसी आपकी फरमाइश रहेगी।

0: BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: छः बजकर 31 मिनट और 15-16 सेकंड्स हो चुके हैं। आपने उस अंतरे पर गौर किया होगा, है ना, और कि बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है, दुनिया जिसे कहते हैं। इत्तेफाक तो रखते होंगे आप इस बात से, फिर वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। कहाँ से ये ख्याल, गुलजार साहब आप ही कर सकते हैं कमाल, विद ऑफकोर्स ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर्स, और आप सभी बने हैं मेरे साथ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अंदाज़ बयां। और आप लोगों से कुछ और बातें मैं शेयर करता हूँ कि सिर्फ 4 महीने बचे हैं इस साल में, कोई बदलाव तो हुआ होगा इस हाल में, पुरानी उलझने सुलझ गई होंगी या आप भी फंसे हो उसी जंजाल में। खैर ये सवाल है और इस सवाल में आपको जवाब खुद अपने आप से पूछना है और जवाब भी आप ही को देना है। मैं चला आप लोगों को लेकर कुछ और खूबसूरत गज़लों की तरफ, बने रहिए मेरे साथ इस अंदाज़ बयां में, दिल से दिल तक।

0: from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: छः बजकर 41 मिनट और 7-8 सेकंड्स हो चुके हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रहा है प्रोग्राम अंदाज़े में, अभी बस मुकम्मल होने वाला है और उसके बाद 7 बजे आप लोगों को पता ही होगा मराठी जो अपडेट्स होंगे, न्यूज़ अपडेट्स, उसके बाद 7:30 बजे भी एक प्रोग्राम होगा फार्म टू सिटी जो चलेगा तकरीबन 8 के आसपास। और उसके बाद आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि वुमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आप कमेंट्री सुन पाएंगे यहाँ पर बिल्कुल इस वक्त लाइव, और आप बने रहिएगा हमारे साथ FM रेनबो पर। फिलहाल ये अंदाज़े बयां का सफ़र आप और हम जारी रखते हैं खूबसूरत गज़लों के दरमियाँ। स्टे ट्यून्ड।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: न्यूज़ ऑन एयर ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल. और चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं जिसका नाम है हम तुम. मैं वसीम आप लोगों के साथ. हैप्पी बर्थडे महिमा चौधरी. ये गाना सुनते हैं आप और हम लौट कर आते हैं यहीं पर दिल से दिल तक.

0: welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है. 7:20 और तकरीबन 54:55 हो चुके हैं और हम तुम प्रोग्राम पर कुछ गाने और उसके बाद आप फार्म टू सिटी प्रोग्राम सुनेंगे और फिर 8 डेफिनेटली आप सुन पाएंगे वुमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की कमेंट्री. FM रेनबो पर बनी रही हमारे साथ दिल से दिल तक.

0: जी हाँ दोस्तों, ये देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, ये अगर आप धुन याद होगी आपको हम तुम पर, बस ये गाने जो मुकम्मल हुए। अब मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि 7:30 बजे से फार्म टू सिटी आप सुनेंगे, और उसके बाद जो वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट उसकी कमेंट्री, तो उनके लिए आप हो जाइए तैयार। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ स्पॉन्सर प्रोग्राम की तरफ, जिसका नाम है फार्म टू सिटी। और आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का बने रहने के लिए हम तुम पर, ये भी सुनिएगा और FM रेनबो के साथ जुड़े रहिए।
1: नमस्कार श्रोते हो, सादर करीत आहोत कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी।

0: ही डालें।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
0: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
0: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: श्रोते हो, आपण ऐकत होतात कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकारद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी। या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते होते रोशन जाधव। ही आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्राची निर्मिती होती।

नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम फार्म टू सिटी। बस अब 8 बजे आप सुन सकेंगे वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की कमेंट्री, और फिर ये प्रोग्राम हम तो मुकम्मल होता है। मैं मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, और भगवान गणेश के आगमन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी बने रहें न्यूज़ ऑन AIR ऐप और FM रेनबो के साथ, आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। मैं चला मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए।

0: There's a modern pop song built around a musical idea that's been hanging around for generations, I think. You hear a song and you feel like, oh my God, I've heard this before, although it's a brand new song. Not so much a brand new song, but a lovely song, all the same memories, Maroon 5, Sadhana requesting for it. Remember, 9:15, we come back after a couple of news break. Between now and then, let us be musically yours.
1: Namaskar. आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
2: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर

0: सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
3: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तू तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान ईरान के नेताओं के साथ साथ

0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
5: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने

0: निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
1: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
2: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS is an ecosystem of solutions, stresses need to translate all outcomes of New Delhi Declaration into time-bound actions as 18th BRICS Summit concludes. Prime Minister holds 15 bilateral meetings with world leaders besides engagements with heads of international institutions on the sidelines of the summit. Home Minister Amit Shah says India should aim to become a global leader in lab-grown diamonds and jewellery sector. 6 persons killed and nearly 130 missing after Indonesian ferry capsizes in Java Sea. In hockey, India's men's and women's teams clinch Junior Asia Cup titles at Moshi in China. And in cricket, women's T20 Asia Cup final match between India and defending champion Sri Lanka underway in Dubai. Indian men's team takes on Afghanistan in the opening game of the 3-match T20 series in Delhi. And now the news in detail. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction.
4: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही

एक नौका उलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल में अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आदाब जी, हम भी हाजिर हैं जी कस्बा गुन्नौर यूपी से, फारूक अली खान साहब पूरी खान फैमिली के साथ। गजल तुम प्यार को पसंद आई और भी जो नगमे हैं वो भी आपको यकीनन पसंद आएंगे। राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से जुड़े हमारे साथ। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ सरकार। हैप्पी संडे जी। हाँ, बहुत बहुत आपको भी हैप्पी वाला जी, और उम्मीद करता हूँ अच्छा बीता होगा आज का दिन आपके लिए। अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से लिखती हैं अपने दिल की बात कि अब जो छूट गया है साथ वापस कभी ना आना तुम, अब जो छूट गया है साथ वापस कभी ना आना तुम, रह गए जो वादे अधूरे किसी और संग ने निभाना तुम, और समझा लूंगी मैं भी खुद को है कुदरत का ये इशारा कोई, जो मिल जाए किसी मोड़ पर कभी बस एक अजनबी सा गुजर जाना तुम। क्या बात है, दिल के जज्बात। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी है, मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या हुआ, बिना मिले दोस्ती निभाना भी जिंदगी है।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी ची नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ SR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपको बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो SR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम रंगे महफिल में। मैं हूं आज आपके साथ आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स, अंशी सिद्ध साहिबा, बहुत ही उम्दा लिखती है फारूक अली खान साहब, अंशी शर्मा।

लिए। जी बिल्कुल, दिल की गहराइयों से लिखी हुई बात हमेशा दिल तक पहुंचती है। रंगे महफिल में आपको प्यार भरा नमस्कार, आदाब, अरसो। कुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आपका भी बहुत बहुत सरकार। ख्वाब देखूं ये तो अच्छा है, पर खुली आंखों से ख्वाब देखूं ये उससे भी अच्छा है, और ऐसी ख्वाब पूरी हो तो इन दोनों से अच्छा है। अमल, ग्राम पोस्ट ताड़र, जिला भागलपुर, बिहार से दिल की बात हम तक पहुंचाते हुए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस महफिल में आने के लिए और बने रहने के लिए।

हम भी आपको सुन रहे हैं, प्रोग्राम और गीत पसंद आ रहे हैं। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार, बहुत बहुत शुक्रिया सरकार बने रहने के लिए हमारी इस महफिल में, और बनी रहिएगा। और भी जो नगमे लाया हूँ, गीत लाया हूँ, आपको यकीनन गजलें पसंद आएंगे। कहते हैं दोस्त की कहानी हमारी अधूरी सही, पर यादों में आज भी पूरी लगती है। वो करीब तो बहुत हैं, मगर कुछ दूरियों के साथ। हम दोनों जी तो रहे हैं, मगर मजबूरियों के साथ। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। लोग कहते हैं मोहब्बत गुनाह है, काश कोई रोक लेता गुनाह होने से पहले।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे।

0: डी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान।

0: से बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम रंगे महफिल में। हर टचिंग सूदिंग योर टॉकिंग एंड आल्सो गजल प्रोग्राम प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू माय हार्ट आकाश। प्लीज टेक फूड एंड रेस्ट स्लीप इन राइट टाइम। ड्रिंक ओनली नॉर्मल वाटर एट नाइट। नो कॉफी नो टी। स्टे ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। थैंकफुल तुम्पा पॉल रेलवे कॉलोनी न्यू दिल्ली से। उम्मीद करता हूँ तुम्पा जी आपका ये मैसेज जो है दिल की बात दिल तक पहुंची होगी। आकाश ये प्रोग्राम सुन रहे हो। अंशु शर्मा हसीनापुर से जुड़े हमारे साथ। फारूक अली खान साहब पूरे खान परिवार के साथ जुड़े हमारे साथ।

दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से जुड़े हमारे साथ और एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए। हमेशा कहता हूँ दिल से शुक्रिया जी, बने रहिएगा। कुछ एक नगमे और भी हैं जो भी सुनेंगे आप। कहते हैं किसी को अपना बनाया नहीं जाता, जबरदस्ती का रिश्ता निभाया नहीं जाता, जो दिल के करीब होते हैं वही अपने होते हैं, गैरों को सपनों में बसाया नहीं जाता। अल्फाज अपने अपने लेकिन जज्बात कहीं ना कहीं सभी के

और दोस्तों वक्त हो गया है तकरीबन कि इस प्रोग्राम से मैं आपसे इजाजत लूं और अगले शनिवार करेंगे मुलाकात प्रोग्राम आपकी याद आती रही में बिल्कुल। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

मैं नफासत से भरा शो और बहुत ही खूबसूरत गज़लों का सिलेक्शन रहा और आपने सभी ने लुत्फ़ उठाया होगा, मैंने भी उठाए हैं स्टूडियो में आकर, और उम्मीद की कि इसी तरह का हर शो आपको मिलता रहे और आप भी पूरी शिद्दत के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। फ़िलहाल 12 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ स्टूडियो में रजत आपके लिए लेकर प्रोग्राम जीरो और शो। लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं एक नज़र अब तक के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 7,500 से अधिक मेधावी छात्रों को 16 सितंबर को भोपाल में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ये ई स्कूटर दिए जाएंगे। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने चीन के मौके में जूनियर एशिया खिताब जीते। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हराकर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़े हैं इस समय आकाशवाणी की ऐप न्यूज ऑन एयर, इसके साथ आप जुड़े हैं दुनिया के हर हिस्से हर कोने से और आपके मैसेजेस हमें बता देते हैं। फिलहाल रहिए हमारे साथ, प्रोग्राम का बस आगाज होने को ही है और प्रोग्राम है जीरो आर शो मेरे अनिल रजत के साथ आकाशवाणी रिम्बो पर।

0: आप सभी का इस्तकबाल एक बार फिर से, और प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जारी है जीरो और शो। इस्तकबाल करते कुछ मैसेज भी आ गए हैं एम राजकुमार साहब का, तिरुचिरापल्ली से, सबसे ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हुए श्रोताओं में से एक। दूसरा मैसेज हमें मिलता है, पहले इसी को पढ़ दें, गुड मॉर्निंग लिखते हैं राजकुमार साहब, और अफशा खानम जी हमें लिख रहे हैं ज़िला बिजनौर धामपुर से, उत्तर प्रदेश से। कैसे हैं आप, वेलकम टू द शो। ये मुझे भी कहना चाहिए, पूछना चाहिए बल्कि आप दोनों से, और बाकी लोग जो अभी टाइपिंग वाला स्टेटस दिख रहा है उन्हें भी हमारा दुआ सलाम मिले, और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। प्रोग्राम से आप जुड़ चुके हैं जिसका नाम है जीरो और शो, मेरे यानी रजत के साथ।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
6: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
5: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
7: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
8: ठीक है,
7: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। इस पर सर देखो जो HR कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
6: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
5: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
9: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
5: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
6: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
5: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
6: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
5: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
6: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
5: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
6: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में

आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

दिल्ली से अनमोल चौधरी हमारे साथ जुड़े, और कहाँ से ये नहीं बता पाए हो, और उसके अलावा सराय काले खान दिल्ली से अनिल ठाकुर हमारे साथ जुड़े, और ये कह रहे कि मैं पहली बार इस शो में शामिल हूँ तो मेरा नाम पढ़ा जाए। ज़रूर पढ़ा है आपका नाम, और आप इसी शिद्दत के साथ आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े रहें, हमारे हर प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें, ये तो तवक्को रहेगी, आपसे उम्मीद रहेगी, और साथ में रहेगा कि आप पूरी चाहत के साथ अपनी मंजिलों को भी पाएं आप सभी लोग, और पूरी ख्वाहिश रहेगी कि आपको कामयाबी मिले भगवान की तरफ से। ये कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, एक गीत और सुनेंगे खूबसूरत सा, उसके बाद जुड़ेंगे अलमास आपके साथ लेकर सुहानी रात आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

नमस्कार, लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 7,500 से अधिक मेधावी छात्रों को 16 सितंबर को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ई स्कूटर दिए जाएंगे। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हराकर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, समय हो रहा है रात्रि के 1:03 और 5 सेकंड्स, और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुहानी रात। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी साथ ही अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार। कुछ प्यारे से गीत आपके लिए नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

जब मांगते हैं बरसों दुआ, तब पहाड़ों की कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी महबूबा जमाने में कहाँ मिलती है।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम

जी हाँ साथियों, हम भी अगली मुलाकात के लिए इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। 2 बजे आपके साथ होंगे रजत शर्मा। मुझे यानी अरमास्टर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 7,500 से अधिक मेधावी छात्रों को 16 सितंबर को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ई स्कूटर दिए जाएंगे। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। क्रिकेट में महिला टी20 एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हराकर एशिया कप

का खिताब जीत लिया है। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: ही खूब आप लोगों का साथ है तो हम साथ ही रहेंगे, और आप लोगों की जो जुम्बिश है हमारे साथ, हमारे साथ जो आपके साथ एक रिश्ता जो बना हुआ है वो हमें बरबस यहाँ खींच ही लाता है। अब देखिए 2:08 हुए हैं और नया शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है भुलाए ना बने, मेरे यानी रजत के साथ। आगे ना हम आपके साथ एक खिंचाव के साथ, ये सोच करके बहुत से दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और प्रोग्राम्स तो जारी रहते ही हैं FM रेनबो पर। साथ ही साथ आपका हमें ये पता चल जाता है कि आप लोग हमारे साथ हैं, आप जिस शिद्दत से हमें याद करते हैं, हमें मैसेज करते हैं, बस मन ही नहीं करता यहाँ से कहीं जाने का, लेकिन ठीक है, सिलसिले हैं ये, चलते रहेंगे आगे तक, बदस्तूर जारी रहेंगे। फिलहाल आप सभी का स्वागत आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी, जैसा कि हम बताते रहते हैं, हम जुड़े हुए हैं देश और दुनिया के किसी भी हिस्से से, किसी भी कोने से, कहीं से भी दिन में रात में आप हमें इस ऐप के ज़रिए सुन सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, 9868107070 हमारा नंबर है। फिलहाल भुलाए ना बने में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मैं रजत, और आपसे गुजारिश है कि अगर आप सोए नहीं हैं, किसी और मसरूफियत के साथ हैं, तो थोड़ा सा हिस्सा उस मसरूफियत का, अपने उस अनमोल वक्त का हमें भी देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, आपके साथ जुड़ना अच्छा लगेगा, आपकी बातें सुनना अच्छा लगेगा, और आपको खूबसूरत गाने भी सुनाना अच्छा लगेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस अच्छे और खूबसूरत इत्तेफाकों के साथ।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर 9:00 बजे।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एचआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एचआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आप सुन रहे आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 7,500 से अधिक मेधावी छात्रों को 16 सितंबर को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ई स्कूटर दिए जाएंगे। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्बा देवरा ने जापान के नाकाशी निशी जुनिया को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और क्रिकेट में महिला टी20 एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हराकर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। वहीं दिल्ली में टी20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, समय हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 3:03 और 2 सेकंड्स। और लीजिए, अब आपके लिए लाए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ हलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर

0: ऑन डिमांड के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

संगीत के साथ ही कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज यही संपन्न होता है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मेरी अलमास्टरसा के साथ 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी। इस गीत के साथ आपको छोड़े जाती हूँ। 4 बजे आपके साथ होंगे रजत।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।